मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार

0: प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ईश्वर की हम आज बात करेंगे क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, जो सभी जगह मौजूद है और सर्वव्यापी है, मंदिर मस्जिद और हमारे भीतर, अनादि है, जो न पैदा हुआ है न मरेगा, न्यायकारी है, जो कर्म का फल देने वाला है और हमें हर स्थिति में क्षमा करने वाला है। हमें ऐसे ईश्वर की वंदना करनी चाहिए।

किसी के लिए मंदिर की मूर्ति, किसी के लिए माँ बाप की सेवा, किसी के लिए प्रकृति का नियम। ईश्वर कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसका उसी भाव में मिलन करवाता हूँ और मैं उसे वैसे ही प्राप्त होता हूँ। ईश्वर वो है जिसे याद करके मन शांत

0: तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए।
1: अतुलित बलधाम कृपा निधान श्री राम भक्त हनुमान मूर्तिमान भक्ति और सेवा मूर्ति है। भक्ति और सेवा का भाव उनके नाम में स्पष्ट दिखाई देता है। ह का अर्थ है शिव, आनंद, आकाश आदि। नु का अर्थ है पूजन, प्रशंसा। मां लक्ष्मी का द्योतक है। न बल, युद्ध, वीरता आदि का सूचक है। अहिल्या पुत्री अंजना के पुत्र हैं, इसलिए आंजनेय हैं। मरुत के अंश हैं, इसलिए मारुति हैं। कपिगोत्र में श्रेष्ठ होने से कपीश हैं। पवन के क्षेत्रज पुत्र होने से पवन सुत हैं। इनके पिता का नाम केसरी था, इसलिए केसरी नंदन कहे जाते हैं। ऐसी विभूति के सामने इस जगत का कोई भी प्राणी श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में सुनिए मदन मोहन मालवीय के विचार।
1: हमारे समक्ष एवं इर्द गिर्द जो भी वस्तु है वो ईश्वर के अस्तित्व का ढिंढोरा पीटती है। ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में है। संसार में वही वास्तविक सत्य है। उससे परिचित होना जीवन का सर्वोच्च सुख है। दूसरों के साथ आप ऐसा व्यवहार न करें जो कि आप दूसरों को अपने प्रति करने देना नहीं चाहते। आप निद्रा त्याग कर उठ खड़े हों और साहस के साथ अपने कामों में जुट जाएं। हृदय में ये दृढ़ विश्वास रखते हुए कि हमें अपने प्रयास में विजय अवश्य प्राप्त होगी। अपनी इच्छा से बिना किसी प्रकार के बंधन व स्वार्थ के दीन दुखी प्राणी की सेवा करना, इससे परे क्या यज्ञ है, क्या तप है, क्या दान है, क्या सुख है। असहाय प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, शीत से सताए हुए को वस्त्र देना, जले हुए के घाव पर मलहम लगाना, डूबते को बचा लेना, जिसके घर में आग लगी हो उसके घर की आग बुझाना, उसके प्राणियों को आग से बचा लेना, रोगी को औषध देकर रोग की पीड़ा से छुटा देना, अंधों को सहायता देना, अनाथ बच्चों और विधवाओं के माता पिता भाई बनना, मेलों में निराश बिछड़े हुओं को मिलाकर उन्हें नया प्राण देना, जो अजान अकिंचन प्राणी विदेशों में अकेले लुट गए हों उनको सहायता देकर उनके घर पहुंचाना, ठग लुटेरों और अन्यायियों से सताए जाने वालों का रक्षक होना, सेवा करना, इससे पवित्र और क्या मार्ग हो सकता है। देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदियों की तरह ऐसे कार्य कदापि न करेंगे जिनसे कि देशवासियों को हानि पहुंचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय आत्माओं की भांति असंख्य कष्ट उठाते हुए भी वही करेंगे जिसमें देश का भला हो। निर्धन धनवान, निर्बल और मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाएं, प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुख मिटें और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियां दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता हुआ देखकर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, उस पुरुष को जान लीजिए कि वो धर्म के तत्व ही कोई नहीं पहचानता। इस विचित्र सृष्टि का वैभव एक परमात्मा दिखा रहा है। वो सब करता हुआ दृष्टा है, खुद ही सब देखता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर और समुद्र के गंभीर तल में उसकी लीला का नृत्य होता रहता है। वो गर्भ में बच्चे की रक्षा करता हुआ पालन करता है, वो उसकी रचना करता है, शरीर के भिन्न भिन्न अंग बनाता है और उनको सुंदर रचकर दिव्य रूप में प्रकट कर देता है। कैसा सुंदर बालक पैदा होता है कि उसकी बनावट देख आश्चर्य होने लगता है। उसके कैसे छोटे छोटे अंग प्रत्यंग बनते रहते हैं। उस कारीगर की रचना अनोखी है। वो अंतर जगत में जैसा कार्य करता रहता है वैसा ही बाह्य जगत में भी करने लगता है। कभी प्रातःकाल की शोभा, कभी संध्याकाल की लालिमा, कभी इंद्रधनुष और मेघाच्छन्न आकाश, कभी शरद पूर्णिमा की शांति, उसकी ज्योति सूर्य की किरणों के रूप में, चंद्र की चांदनी में, पुष्प की सुगंध में और भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरूप में दृष्टिगोचर होती रहती है। जब कोई भारी सहायता कर देता है तो हम उसके आभार को मानते हैं, उसके कृतज्ञ होते हैं और धन्यवाद देते हैं। तब जिस प्रभु ने हमारे जीवन के लिए सब कुछ दिया है, सुंदर शरीर, दिव्य रूप दिया, उसका उपकार मानना चाहिए या नहीं?
0: मदन मोहन मालवीय के विचार। अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: बाग बागवानी में आम के बाग का बड़ा महत्व होता है और जिससे किसान भैया बहनी हरिन चार पैसा के आमदनी कर। तो आज अपने कार्यक्रम के बीच में डॉक्टर उषा यादव नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट शू एड्स प्रयागराज से आए हमें और आज अपने कार्यक्रम के बीच में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और आम के बाग में कीट प्रबंधन संबंधित तरह तरह के किसान भैया बहनी हरिन का समस्या आए जात है। आम में कीट पतिंगा लाग जात है, रोग लग जात है, तो इनके रोकथाम बदे हमार किसान भैया बहनी हरिन कौन सा उपाय करें इस बारे में फरियाए की जानकारी दें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं आम जो है फलों का राजा है
0: जी।
1: और भारत में प्रमुख रूप से इसकी फसल होती है और
0: हाँ।
1: उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है इसकी खेती की जाती है। आम से न केवल किसानों को आय मिलती है इसके साथ साथ उनको पोषण और रोजगार भी मिलता है
0: जी।
1: तो यह एक बहुत ही प्रमुख फसल है जिसके प्रबंधन के लिए अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो कीड़े लगते हैं आमों पे वो है आम का हॉपर जिसे बोलते हैं, मिलीबग, फल मक्खी और जो है तना छेदक और इसके साथ साथ जो है पत्ती में लगने वाला जो है शूट बोरर और थ्रिप्स प्रमुख रूप से इस पे आक्रमण करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो आम को हमारा जो है दिसंबर जनवरी से स्टार्ट होता है और उस पे हमें प्रमुख रूप से निगरानी रखनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे हमें उस पे कीटों पे जो है निगरानी रखनी चाहिए, कितने कीट लग रहे हैं और वो हमें जून जुलाई तक उन पे निगरानी रखनी चाहिए ताकि हम अपनी फसल को बचा सकें और कीड़ों के आक्रमण से उसको रोक सकें।
0: हम आपसे ये जानना चाहे थे कि जैसे कि आम के पेड़ में ऊपर कीट जैसे रोग लग जाते कीट लग जाते हैं तो ऐसे से निजात पावे बदे किसान भैया बहनी हरिन कौन बातन का ध्यान।
1: जी, सबसे पहले तो हमें हॉपर से बचाने के लिए नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए अपने बगीचों की और इसके साथ साथ जो है प्रूनिंग जिसे कहते हैं छटाई उसको हमें लगातार करते रहना चाहिए जिससे कि हवा और प्रकाश जो है का संचार जो है बना रहे और कीड़े जो हैं उससे जितना डेंस प्लांटिंग होगी हॉपर में जितना ज़्यादा जो है आर्द्रता होगी ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा ये हॉपर जो है अटैक करता है। इसके लिए हमें समय समय पे छटाई करते रहना चाहिए जिससे कि इन कीटों का प्रभाव कम हो। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम आवश्यकता पड़े तो हमें इमिडा क्लोरोपिट का जो है प्रमुख रूप से यूज़ करना चाहिए। इमिडा क्लोरोपिट जो है 17.8 SL जो है इसको हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसे हमें जो है 3 ml लेना चाहिए 10 लीटर पानी में इसको मिलाकर इसका छिड़काव करें।
0: अच्छा, साथ साथ दूसर कीट भैया देखा जैसे कि आम में मिली बग, यह कीट जो है खेती किसानी के साथ साथ बाग बागवानी में बड़ा नुकसान पहुंचावत है तो ऐसे दशा में किसान भैया बहनी हरिन कौन बातन का ध्यान रख।
1: जी, आपका मिली बग होता है इसको कड़ी कीड़ा भी बोलते हैं क्योंकि ये सफेद रंग का होता है और ये तने पर और जो पत्तियां होती हैं उस पर चिपक जाता है, उनसे रस चूसता है, बौर पे भी जो है लग जाता है और इसके साथ साथ अगर इस पे हम निगरानी ना रखें तो ये फलों का भी रस चूसता है जिसकी वजह से जो है समय से पहले ही जो है बौर गिर जाते हैं और फल पूरी तरीके से बन नहीं पाता है और जो पेड़ होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। पेड़ों पे जो है प्लास्टिक बैंड को अगर हम रैपिंग कर देंगे, एक बैंडिंग कर देंगे जिसके ऊपर हम लगभग 2 से 3 फीट ऊपर 400 गेज की जो पॉलिथीन की जो पट्टी होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर चौड़ी होती है इसको आप लपेटें और इसके किनारों ग्रीस लगा दें
0: जी।
1: इससे क्या होगा कि कीड़े जो हैं जो अंडे से बाहर निकलेंगे वो पेड़ पे ऊपर जाके वो बौर पे जाके अटैक नहीं कर पाएंगे।
0: साथ साथ बहुत से जिन्हें की तना छेदक कीट भी लग जाते जिससे पौधन का बड़ा नुकसान हो जाता तो ऐसे दशा में हमारे किसान भैया बहनी हैं क्या कर।
1: जी, इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो है इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और पहचानने के बाद आप देखें कि बुरादा जो है बाहर गिरने लगता है और पेड़ जो है अंदर से खोखला हो जाता है, सूखने लगता है क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबे समय तक तने पे खाता रहता है और एक साल में अपना जो है जीवन चक्र पूरा करता है। तो इसमें हमें उपाय जो है तने के

0: ही रुई के फोहे में जो है मैलाथियन या फिर पेट्रोल का जो घोल होता है उसमें रुई को भिगोकर उस छेद के अंदर डालें और उसके ऊपर से उसको क्या कहते हैं किसी मिट्टी की मदद से, गीली मिट्टी या गोबर की मदद से उसको पूरी तरीके से बंद कर दें,
1: जी
0: जिससे जो है अंदर उपस्थित जो सुंडियाँ होती हैं वो उसी पेड़ के तने के अंदर ही मर जाएंगी और उसके बाद उसमें जो है जो वयस्क कीड़ा बन के नहीं निकल पाएगा। तो
1: जी
0: ये एक बेहतर उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप छेद है उसके अंदर तो उसमें एक पतला तार डाल के उसकी सफाई करते रहें ताकि जो है आगे उसमें वो उस पर अटैक ना कर पाए, सूढ़ी उसमें आगे उसको प्रभाव उसका कम हो जाएगा।
1: अच्छा, साथ ही साथ फल मक्खी कीट भी अपन जो है बहुत रोग फैलावत है, जो उतने से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो फल मक्खी कीट से भी रोकथाम बदे कौन बातन का ध्यान रखें?
0: जी, ये जो फल मक्खी होती है ये हमारी जो किसान भाइयों की जो पूरी मेहनत होती है उस पे पूरा पानी फेर देगी अगर हम फल मक्खी को नहीं इसका बचाव करेंगे तो, क्योंकि ये जो है हमारे पके हुए आमों पे डायरेक्ट ही अटैक करती है। तो
1: जी
0: क्योंकि हमारा जो आम है वो पका हुआ जब होता है तब जो है मादा मक्खी उसके अंदर जाके अपने अंडे देती है और सुंडी जो है गूदे पे खाती है और गूदे को सड़ा देती है। तो इसके कारण जो फल हैं वो पकने से पहले और पकने के बाद जो है गिर जाते हैं, जिससे भारी नुकसान जो है हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ सकता है।
1: जी
0: तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय ये है कि जितने भी बगीचे में गिरे हुए सड़े हुए जो फल होते हैं उनको इकट्ठा करके मिट्टी में गहरा दबा दें, और गहरा दबाने के साथ साथ इसमें हम सबसे अच्छा है कि 1 महीने पहले, फल पकने के 1 महीने पहले ही मिथाइल यूजिनॉल जो ट्रैप आता है उसको आप 6 से 8 ट्रैप पर एकड़ में आपको इसको लगा दें। तो इससे आप जो है फल मक्खी से अपने क्या कहते हैं फलों को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक उत्तम उपाय ये भी है कि आप इसमें बैगिंग कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी न्यूज़पेपर या कागज़ के किसी बैग से या पॉलिथीन के बैग के बजाय आप जो है क्या कहते हैं कपड़े का जो जूट बैग होता है उससे भी आप उसकी बैगिंग कर सकते हैं, जिससे कि फल मक्खी मादा जो है वो अंडे नहीं दे पाएगी आपके पके हुए फलों पर।
1: अच्छा, साथ ही साथ यह देखा जाता है टेम टेम पर कि पत्ती मोड़क कीट भी एक ऐसे जोन है जोने से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे जो है रोकथाम बदे किसान भैया बहनी हरिन कौन बातन का ध्यान रखें?
0: जी, इसके लिए हमें जो सैप सकर्स होते हैं ये मेनली, तो इसके लिए हमें सबसे उत्तम उपाय है कि हमें 5% जो है नीम ऑयल का छिड़काव करना चाहिए ताकि जो ये सैप सकर्स जितने भी हैं ये पत्ती का जो रस चूसते हैं ये अपने आप जो है मर जाएंगे।
1: जी, साथ ही साथ हमार किसान भैया बहनी हरिन और भी कौन बातन का ध्यान रखें कि ताकि कीट पतंगन से छुटकारा मिल सके?
0: जी, इसका सबसे उत्तम उपाय यह भी है कि बगीचों में हमें समय समय पर जो है डीप प्लॉइंग करना चाहिए, यानी कि हमें जुताई करवानी चाहिए, जिससे कि जितने भी छिपे हुए अंडे या उसके जो मादा प्यूपा जो भी स्टेज है जो कि एक प्रजनन का काम करती हैं, लाइफ जीवन चक्र को कंप्लीट करने का काम करती है, उसको हमें तोड़ना चाहिए सूर्य के
1: जी
0: प्रकाश में, और
1: जी
0: डेंसिंग जो है दूर दूर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज डेंसिंग ना हो। और हम तरह तरह के ट्रैप इसमें लगा सकते हैं जिससे कि हम अपने आम की फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि पेड़ों में प्रकाश का जो संश्लेषण है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो जो है पूरी तरीके से रुक जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें जो है सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हमें इमिडाक्लोरोपिट का छिड़काव करना चाहिए, साथ के साथ हमें थायामेथोक्सेम का भी प्रयोग करना चाहिए। पहला स्प्रे जो है हमें बोराने पर करना चाहिए और दूसरा स्प्रे जो है जब मटर के दाने बनने लगते हैं तब
1: जी
0: हमें थायामेथोक्सेम का प्रयोग, 25 WG बोलते हैं उसको, हमें 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसको हमें छिड़काव करना चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि फुल ब्लूम यानी कि फूल खिलने के समय पर स्प्रे ना करें, उससे
1: अच्छा
0: पहले ही जो है हमें स्प्रे करना चाहिए।
1: जी, तो आज अपने कार्यक्रम के बीच में आम के बाग में कीट प्रबंधन संबंधी जोन आप जानकारी दीहिन, ये जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आपका।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर उषा यादव से सुरेश कुमार की बातचीत। विषय था आम की फसल में कीट प्रबंधन। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर रंजीत कुमार को। विषय है पेट दर्द में कारगर होम्योपैथिक।
1: पेट दर्द एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रोगी के पेट के हिस्से में असहजता, बेचैनी, अत्यधिक असुविधा एवं अन्य असुखद अनुभूति होती है। खासकर पसलियों एवं श्रोणी अर्थात पेल्विस के मध्य होने वाले दर्द पेट दर्द की श्रेणी में आते हैं। पेट दर्द के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इनमें पहला है अल्पकालिक या एक्यूट पेट दर्द, जिसमें दर्द कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए होता है। इसमें बेचैन कर देने वाला तीव्र एवं असहनीय पीड़ा होती है। अल्पकालिक पेट दर्द के मुख्य कारणों में एपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पित्ताशय में पथरी, किडनी में पथरी, पेल्विक सूजन संबंधी विकार, इंट्रा एब्डोमिनल फोड़ा, पेप्टिक अल्सर, एरोटिक एन्यूरिज्म, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेटेरिक एवं बिलियरी कोलिक, और महिलाओं में खासकर ओवेरियन सिस्ट, डिसमेनोरिया अर्थात मासिक धर्म के साथ पेट दर्द इत्यादि शामिल है। दूसरा प्रकार है क्रोनिक अर्थात दीर्घकालिक पेट दर्द, जिसमें पेट दर्द 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा समय तक बारंबार लगातार बना रहता है, जो पेट के विभिन्न भागों में अंतर्निहित अंगों की संलिप्तता पर निर्भर करता है। दीर्घकालिक पेट दर्द के मुख्य कारणों में कैंसर, पेट के अंगों में एब्सेस या फोड़ा होना, लिम्फ एडेनोपैथी, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव, कशेरुका संपीड़न, मधुमेह, एडिसन रोग, हाइपरकैल्सीमिया इत्यादि शामिल है। रक्तजनित कारणों में सिकल सेल रोग, हिमोलाइटिक विकार, न्यूरोलॉजिकल कारणों में रीढ़ की हड्डी में घाव, टेविस डोर्सेलिस, अन्य कारणों में जिद्दी कब्ज, अत्यधिक गैस, अपच, हर्निया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ज्यादा भोजन करना इत्यादि शामिल है। अगर पेट दर्द के लक्षणों की बात करें तो खासकर एक्यूट पेट दर्द के लक्षण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आंत संबंधी दर्द। इसमें कटने, जलने, खिंचाव जैसा संकुचन की तरह मरोड़ वाला दर्द होता है। दूसरा है पेरिटल पेरिटोनियम का दर्द, जिसमें मुख्य रूप से तंत्रिका सम्मिलित होता है। इसमें तेज चुभन जैसा असहनीय दर्द होता है जो एक ही जगह स्थायी बना रहता है। तीसरा प्रकार है रिफर्ड पेन अर्थात जिसमें दर्द किसी एक अंग से पेट के दूसरे हिस्से में या पीठ की तरफ स्थानांतरित होती है। उदाहरण के लिए पित्ताशय का दर्द स्थानांतरित होकर रोगी के कंधे एवं पीठ में महसूस होता है। चौथा प्रकार है मनोवैज्ञानिक, जिसमें मानसिक अशांति, नकारात्मक सोच, चिंता एवं अवसाद के कारण दर्द की अनुभूति होती है। दीर्घकालिक पेट दर्द में बार बार एक समय अंतराल पर पेट के विभिन्न हिस्सों में दर्द होता है, जो पेट के भीतर अंतर्निहित अंगों के संलिप्तता के कारण होता है। इसमें रोगी के आचरण, मनोदशा, भावनात्मक स्थिति, वजन घटने, बुखार, पीलिया एवं एनीमिया पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पेट दर्द के होम्योपैथिक उपचार में दर्द का अनुभव करने वाले रोगी के विशिष्ट लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर उपचार का विकल्प भिन्न हो सकता है। अतः उचित निदान और उपचार के लिए किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना और उनके देखरेख में औषधि लेना आवश्यक है। पेट दर्द के उपचार में कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होता है, उसमें पहली दवा है कोलोसिन। इसमें पेट में कष्टदायक काटने जैसा दर्द होता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे पेट में पत्थर एक साथ पीस रहे हो और फटने वाला हो, जो खाने पीने के बाद और बढ़ जाता हो। रोगी को पेट दबाकर सामने झुकने से राहत महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में कोलोसिन बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। दूसरी औषधि है मैग्नीशियम फॉर। इसमें पेट दर्द तेज काटने वाला, छूड़ा घोंपने वाला, सूटिंग सिलने जैसा दर्द होता है। पेट में अत्यधिक गैस होने से ऐंठन युक्त मरोड़ जैसा दर्द होता है। इसमें दर्द अपना स्थान परिवर्तित करते रहता है। रोगी को पेट पर दबाव बनने से राहत मिलती है। ऐसी स्थिति में मैगफॉस बहुत लाभकारी होता है। तीसरी औषधि है चाइना ऑफिसिनेलिस। इसमें पेट के दाहिने भाग में ज्यादातर दर्द महसूस होता है, मुख्य रूप से पित्ताशय की पथरी, अत्यधिक गैस जिसमें ना तो डकार से आराम मिलता है ना ही गैस पास करने से। रोगी को खाने के बाद और रात में दर्द ज्यादा अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में चाइना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। चौथी दवा है ब्रानिया अल्बा। अगर रोगी को लंबे समय से जिद्दी कब्ज हो, मल बहुत सख्त होता हो, इसमें रोगी को पेट में जलन जैसा, सिलने जैसा दर्द होता है, जो रोगी के खांसने, छींकने, तेज सांस लेने से बढ़ता है और विश्राम करने से कम होता है। साथ ही रोगी को अत्यधिक प्यास लगती है, तो ऐसी स्थिति में ब्रानिया काफी लाभकारी सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त डायस्कोरिया, ओपियम, प्लम्बम मेट, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, कार्बोभेज, बर्बेरिस

0: वल्गेरिस, कार्डोस मेरिनस, एस्टेफिसेग्रिया, कालीबैक्रोमेकम इत्यादि भी बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधियाँ हैं जो रोगी के पेट दर्द में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।
1: पेट दर्द में कारगर होम्योपैथिक डॉक्टर रंजीत कुमार को अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 7 बजे सुनिए श्रीरामचरितमानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, 12:15 पर पंडित वृज नारायण का सरोद वादन और रात 10:30 पर उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन सुनिएगा। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनेगा 9:50 पर और रात 7:45 पर। 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा उमंग 10:30 पर। 11 बजे कार्यक्रम होगा एक ही कलाकार। 12:30 पर श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम सुनेगा हेलो फरमाइश। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में रश्मि टंडन के गाए लोकगीत के साथ गरिमा यादव की वार्ता सुनिए। विषय है सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव। 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा लोकगीत के कार्यक्रम में।

शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम होगा और युवजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी 5:15 पर। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुनेगा बाबूलाल दिवाकर के गाए लोकगीत के साथ रामायण पाठ। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम होगा।

सबरस कार्यक्रम सुनेगा 8:30 पर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा 9:30 पर। खेल दर्पण ये कार्यक्रम आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से रात 10:00। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है।

श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि अन्य सेवकों को लेकर पुष्पक विमान उत्तर दिशा में अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी स्नानादि के पश्चात श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वे ब्रह्मचारी के रूप में अयोध्या जाकर यहाँ का समाचार सुनावें और वहाँ का कुशल क्षेम पूछकर लौटें।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले की आवाज़ से। नील कमल फिल्म का ये भजन, बोल साहिर के, संगीत रवि का।

गीतमय पाठ, संगीत सतीश भाटिया का था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले की आवाज़ से। नील कमल फिल्म का ये भजन, बोल साहिर के, संगीत रवि का।

सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से मन्ना डे लता मंगेशकर की आवाज़, बोल पंडित नरेंद्र शर्मा के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

नीलकमल फिल्म का ये भजन आपने सुना। आशा भोसले की आवाज़ थी, साहिर के बोल थे, रवि का संगीत था। कार्यक्रम का अगला भजन सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से

0: सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विकास का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा।
1: आप सब लोग जानते हैं, बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास

0: कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग अहीर भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पूरन कुमार मिश्रा, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग अहीर भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पूरन कुमार मिश्र, हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। समूह स्वरों में सुनिए ये देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान

0: शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड

0: के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षी बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
2: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से

रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के

0: हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में CBI ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। CBI का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RGKR Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets.

0: हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इक्तसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तय अज़्म और काबिल तजदीद तवानाई में तेज़ी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीक़ेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत मआब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वज़ीर-ए-आज़म के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुल काहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकतदारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिल तरजीह तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकत दारी समझौते के नफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खत्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्याल का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़ीर आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इटली की वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह

0: ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत, पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अल-अक़वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हममनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रिसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बी वी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीज़न में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का

सिंह। श्रोताओ, आप भी जुड़ जाइए इस कार्यक्रम में। हमारी व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपना विचार लिखकर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। आज हम श्रोताओ, आज हम बात करेंगे विश्व परिवार चिकित्सक दिवस पर। आज है 19 मई। श्रोताओ, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस हर साल 19 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार चिकित्सक संगठन WONCA द्वारा 2010 में स्थापित विश्व परिवार चिकित्सक दिवस स्वास्थ्य सेवा में परिवार चिकित्सकों के महत्व का एक वैश्विक उत्सव बन गया है। मरीजों को व्यक्तिगत, व्यापक और दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में परिवार चिकित्सक की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। इसकी शुरुआत 1933 में जॉर्जिया में हुई, जब पहली बार डॉक्टर दिवस मनाया गया। यूडोरा ब्राउन आलमंड, एक प्रसिद्ध चिकित्सक, डॉक्टर चार्ल्स बी आलमंड की पत्नी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए दुनिया भर के डॉक्टरों और चिकित्सकों के समर्पण और कड़ी मेहनत को पहचानने का, उसे सम्मानित करने के लिए इस दिन को निर्धारित करने का निर्णय लिया। विश्व परिवार चिकित्सक दिवस स्वास्थ्य प्रणालियों में परिवार चिकित्सकों के महत्व को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पारिवारिक डॉक्टरों के समर्पण और व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण में उनके योगदान की सराहना करने का अवसर है। समग्र स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक कल्याण में परिवार चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीमारियों की पहचान कर सही इलाज प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सलाह देते हैं और आपात स्थितियों में जीवन रक्षक की भूमिका निभाते हैं। नियमित जांच की, टीकाकरण और सही जीवन शैली के सुझाव देकर वे हमें बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं। शारीरिक ही नहीं, वह हमें भावनात्मक सहारा भी देते हैं। मार्गदर्शक और परामर्श दाता बनकर मरीजों को, उनके परिवारों को मानसिक मजबूती भी प्रदान करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान जिंदगी देता है, डॉक्टर उसे बचाने की जंग लड़ता है। इसीलिए तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहलाता है।

वक्त हो चुका है आपके विचारों के पढ़ने का, जो आपने हमें फेसबुक के माध्यम से भेजा है। तो अब पढ़ते हैं आपके वो विचार। सबसे पहले भेजा है श्याम जी नैनी प्रयागराज से। ये लिखते हैं कि कहा जाता है कि कद्र करना सीख लीजिए, न जिंदगी वापस आती है न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से ठीक हो जाती है। बहुत ही सुंदर विचार लिखा है आपने। अगला विचार लिखा है नीरा त्रिपाठी जी ने। ये लिखती हैं कि हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब बात आत्मसम्मान की हो, अन्यथा सादगी ही सबसे बड़ा परिचय होता है। एक और विचार इन्होंने भेजा है कि नजर से नजरिया का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चल ही जाता है। बहुत ही सुंदर विचार लिखा है आपने नीरा जी ने। ये लिखते हैं आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे जी। इनका विचार है कि सहज और सहस आचरण सहित मनुष्य में ही संभवतः नमनशीलता रहती है, उसकी वही विनयशीलता कर्कश चरित्र को भी शीतल कर देती है। ऐसे ही लोग वस्तुतः साधु संत महात्मा पीर फकीर इत्यादि की श्रेणी में आते हैं। उनसे इतर साधु संत महात्मा तथा पीर फकीर कहलाने वाले लोग तो अवसर जीवी और आडंबर जीवी होते हैं। बहुत ही सुंदर विचार आपने भी लिखा है। और अगला विचार है दयानंद कॉलेज भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। ऋतिक, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी, ये लिखते हैं कि जिंदगी में हमेशा ऐसे इंसान बनो जो किसी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में सम्मान छोड़ जाए, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे कर्म ही इंसान की असली पहचान होते हैं। बहुत ही सुंदर विचार आप सभी भेजते हैं और ये पढ़कर हमें आप तक पहुंचाने में बेहद खुशी होती है। दुर्गेश नागनवाड़ी, राधेश्याम नागनवाड़ी, वंदना, भावना, बिंदु, गोली, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश, सूरज, ये लिखते हैं कि बीत गई रातों वाली सुनहरी रात, याद आई फिर वही प्यारी सी बात, खुशियों से हर पल हो आपकी मुलाकात, इसलिए मुस्कुरा के करना दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, बहुत ही सुंदर लिखा है आपने जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं सादुल शहर राजस्थान से। इंसान क्या है? इंसान वह ताकत है जो किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है, लेकिन हौसला और हिम्मत के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अपना निजी स्वार्थ अगर त्याग कर समाज हित में जन सहयोग के साथ कोई कार्य करें तो वह देश, वह राज्य, वह शहर, वह गांव हमेशा प्रत्येक समस्या मुक्त हो सकता है। आओ हम सब मिलकर समाज हित में प्रत्येक कार्य लग्न के साथ करें और जन सेवा में अपना योगदान देवें। बहुत ही सुंदर विचार आप सभी ने लिखा है। और ये लिखा है आर्यनगर कोहका भिलाई, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष, इन्होंने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें तो हम आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं। आपकी पसंद का नहीं, ये सभी श्रोताओं के पसंद का गीत है।

एक विचार भेजा है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। बेड़ी नाना जी, लाम से मीना, लाम से तेजस, लाम से हर्षिता, इन्होंने लिखा है कि हम आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आकाशवाणी परिवार से हम काफ़ी दिनों से जुड़े हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का कार्यक्रम सुनकर। ऐसे ही कार्यक्रम में आप सभी अपने अपने विचार लिखकर भेजते रहिए। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन सुबह 8:45 पर कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जीत फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक विनोद राठौर की आवाज में। समीर के बोल, संगीत नदीम श्रवण का,

कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत सुनिए मस्ती फिल्म से आनंदराज आनंद की बोल, बोल समीर की आवाज आनंदराज आनंद के और संगीत आनंदराज आनंद का।

0: मस्ती फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और सोनभद्र जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
1: बस्ती जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। जिले में गौशाला के रखरखाव और गर्मी में गौवंश की सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। बैठक में हर गौशाला के लिए नोडल अधिकारी तय किए गए। बस्ती में गौशालाओं की बदतर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने विभागीय अधिकारियों और सभी शासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया
2: कि हमने सभी गौशालाओं को लेकर के एक विस्तृत बैठक की। इसमें हमने कुछ नए नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। मीटिंग में हमने सबसे पहले तो जितने भी जीओ हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया। इनको ये भी बताया कि जब ये निरीक्षण करने जाएं तो किस प्रारूप पे इनको निरीक्षण करना है, एज वेल एज गौशाला में इनको क्या देखना है। उसी के साथ गर्मी से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
1: राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा में मेधावी छात्रों को प्रशस्त पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को मूर्त रूप अजय प्रकाश लाल व अमित यादव द्वारा दिया गया। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा खाड़ी देशों में मौजूद हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की बचत की गई अपील पर मंडल के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से देश हित में एवं मौजूदा हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की हर एक बूंद की बचत देश की

0: व्यवस्था को मजबूती देगी। इसको लेकर अपने निजी वाहनों को छोड़ बस, टैक्सी व साइकिल से ऑफिस आने की सलाह दी गई, जिसके क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस निमित्त शासकीय वाहन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा अपने आवास से साइकिल द्वारा कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों का संपादन किया गया एवं ईंधन की बचत के लिए मंडल के ग्राम विकास विभाग से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे देश हित में कम से कम वाहनों का प्रयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बस्ती जिले में तहसील जूसो में फरियादियों की लगी भीड़। सदर तहसील में 90 शिकायतों में 6 का निस्तारण मौके पर कराया गया। बस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ शनिवार को विक्रम ज्योत में हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पहले दिन 7 तथा दूसरे दिन 4 सत्र सम्पन्न होंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रदेश के सम्मुख चुनौतियों एवं निदान के हमारे प्रयास विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती शक्ति से घबराई देश विरोधी ताकतें सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दूसरे सत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी वैचारिक अधिष्ठान विषय पर अपने विचार रखे। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि गौ आश्रय को अब 5 से 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है, लोगों को पशु पालने के लिए निराश्रित पशुओं के देखभाल के लिए जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार गौ सेवा को केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं एक पवित्र के रूप में स्वीकार करते हुए सतत कार्य कर रही है। बस्ती जिले के सलटौआ विकास खंड में गरीबों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली, अब महंगे मैरिज हॉल की टेंशन खत्म होगी। यहां वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ मीटिंग और सरकारी आयोजन भी हो सकेंगे। ये बहुउद्देशी भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब परिवारों के आत्मसम्मान की नई नींव है। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने बताया।
1: मुझे लगता है जनपद ही नहीं प्रदेश का पहला ऐसा विकास खंड होगा जहां ऐसा भवन का निर्माण कराया जा रहा है जहां गरीब परिवार सिर्फ इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट देकर अपने बेटियों की शादी यहां पर ऑर्गेनाइज करा सकते।
0: बस्ती जिले की जिलाधिकारी कृतिका जोशना द्वारा जनपद में विभिन्न विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ सफाई, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा मिड डे मील की गुणवत्ता का गहनता से परीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत विकास खंड बनकटी स्थित पीएम श्री विद्यालय डोमी से हुई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। वही जिलाधिकारी कंपोजिट विद्यालय डाडीडीहा पहुंची, जहां कक्षाएं संचालित होती पाई गयी। जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर प्रतीक्षा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। बच्चों को परोसी गई रोटियां मोटी एवं जली हुई पाई गई। भोजन की खराब गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापिका अनीता द्विवेदी और रसोईया के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। बस्ती जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर फीटा काट कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जेल में महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की न्यायमूर्ति ने सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौता पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। बस्ती जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी का बुरा हस्त्र होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन की समाप्ति का जनादेश है। बंगाल में गुंडागर्दी, बंगाल में हिंसा का रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो बड़ी मात्रा में इसी बंगाल के रास्ते से देश में हमारी संपत्तियों पर जिसका अधिकार भारत के नागरिकों का था उस पर आज बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ केवल हमारे देश के लोगों का कब्जा होगा।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का।
3: सोनभद्र में विगत दिनों आंधी तूफान से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई है। आंधी और तूफान के नुकसान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत आंधी तूफान में हो गई, जबकि दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हुए। आंधी तूफान के चलते अभी भी कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप ही पड़ी है। जगह जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं, जिसे लगातार सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आम के फल से लदे वृक्षों के फल बड़े पैमाने पर गिर गए हैं। जिलाधिकारी ने आधी तूफान में मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सोनभद्र में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुलाब जामुन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अब तक ऊर्जा के क्षेत्र में पहचान रखने वाले सोनभद्र को अब गुलाब जामुन मिष्ठान के रूप में भी जाना जाएगा। परंपरागत कारीगरों को प्रोफेशनल कारीगर बनाने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार लोन भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके हुनर को बढ़ावा मिल सके। जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में

0: नई उड़ान मिल रही है। जनपद के करीब 2000 युवाओं को ब्याज मुक्त 100% धनराशि दी गई है। सोनभद्र में 5 दिवसीय अंश निर्धारण का विशेष अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में जनपद की चारों तहसीलों को मिलाकर लगभग 20,000 से ज्यादा खाता धारकों के अंश का निर्धारण किया गया। जनपद सोनभद्र जो पूरे देश को विद्युत आपूर्ति करता है, यहाँ की बिजली उत्पादन से देश की राजधानी दिल्ली को रोशनी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य की जनपद के ही 834 मजरों को आज तक आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकी है। नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस तरफ विशेष अभियान के तहत हर हाल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के विशेष निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य की प्रत्येक सप्ताह में खुद मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश से बिजली विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन मजरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है वो अति दूर क्षेत्र है। ऐसे में इस अभियान को अमली जामा पहनाना काफी परेशानियों भरा है। सोनभद्र में विगत माह भर के अंदर में 2 दर्जन से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो गई हैं। आए दिन ओवरलोड ट्रकों के संचालन से दुर्घटनाओं का घटित होना जनपद के लिए अब आम बात हो गई है। परिवहन विभाग के साथ साथ खनन विभाग हर हाल में ओवरलोड वाहनों के संचालन को चालू रखना चाहता है। इसके लिए बाकायदा खनन और परिवहन विभाग अंदर खाने से अवैध वसूली करते हैं। जनपद सोनभद्र में प्रारंभ हुए जनगणना के कार्य में सरकारी अमला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 7 मई से प्रारंभ हुई जनगणना के प्रथम दिवस पर ही कुल 19,984 लोगों ने स्वगणना कर पूरे प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक गणना कर प्रदेश का प्रथम जिला बनने का गौरव हासिल किया है। जिलाधिकारी चर्चित दौड़ के कठिन प्रयास से इस अभियान को अमली जमा पहनाया जा सका है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जनगणना उस देश की आगामी विकास की धुरी होती है। जनगणना के आधार पर ही विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है। जनपद में हाल के दिनों में तेज धूप और लू से आम जन जीवन प्रभावित है। तेज धूप का आलम यह है कि सुबह 9 बजे के बाद से लोग घर में सिमट जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है, जो देर शाम होने के बाद ही सड़कों पर रौनक नजर आ रही है। सर्वाधिक परेशानी जानवरों पंछियों को देखने में मिल रही है। हालांकि गौशालाओं में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं, जबकि नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर पेयजल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह शरबत के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल समाप्त हुई।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: वो माजी की यादें वो माजी के साए किरण बन के फूटे घटा बन के छाए। जी हां, सामान्य अदब आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आपकी मेजबान रबा बंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ सुनहरी यादों के साथ। आज हम और आप जिस जरिए से एक दूसरे से राब्ते में हैं, एक दूसरे के रूबरू हैं, वो राब्ते का जो हमारा जरिया है यानी कि हमारा रेडियो, आज हम बात करेंगे उसी की तारीख की, उसी की तारीफ की और उसी की अहमियत की। जी, आज हमारा मौजू है रेडियो के 90 सुनहरे साल। आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो हिंदुस्तान का एक ऐसा कौमी रेडियो नशरिया है जिसके जरिए सिर्फ हिंदुस्तानी ही आपस में नहीं एक दूसरे से जुड़े बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी नशरियात ने पूरे बरसगीर को एक दूसरे से जोड़कर रखा। और ये लंबा सफर बहुत सी सुनहरी यादें अपने साथ अपने दामन में समोता गया जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आज उन्हीं यादों को सजोकर हमने अपने स्टूडियो में इनकाद किया है एक गुफ्तगू का, और इस अहम गुफ्तगू के लिए हमने मदु किया है अपने मेहमानों को अपने स्टूडियो में। पहले हम आपसे उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब और जनाब परवेज खान साहब। हम समीमे कल्ब से अपने दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में और मुबारकबाद देते हैं उन्हें भी कि वो इसी रेडियो के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं

0: जिनकी तादाद 591 है इस वक्त। 591 ये स्टेशन हैं जो अपनी नशियात देते हैं, और ये नशियात 23 जबानों में और 146 बोलियों में नश्र की जाती हैं।
1: ये एक बड़ी कामयाबी है,
0: बड़ी कामयाबी है, और हिंदुस्तान के 98% लोगों तक रसाई है
1: जी हाँ, जी
0: आकाशवाणी की, तो जरूर ये एक इनकलाबी कामयाबी है और बड़ा कारनामा है।
1: देखिए, हम समझते हैं कि शायद मैं खुद को तो उसी जुमरे में रखूंगी कि हम लोगों की जो नस्ल थी उसकी तरबियत में भी रेडियो का बड़ा हाथ रहा,
2: बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक की बात नहीं।
0: जी, मैंने ये महसूस किया है। मैं एक शेर की जबान में अपनी बात बताना चाहूंगा कि मुझमें हर दौर की तारीख नेहा है, लोगों मेरे किस्से से कई किस्से आया होते हैं।
1: बहुत
0: बात यह है कि रेडियो ने समाजी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी के हर शोबे में अपनी रसाई हासिल की। वो कोई ऐसा शोबा है ही नहीं हमारी जिंदगी का जिसमें रेडियो ने कहीं ना कहीं अपनी खिदमात ना पेश की हों और हमें मालूमात ना फराहम की हों, या हमारे लिए, जैसे अभी परवेज भाई ने जिक्र किया कि गांव में बैठते थे, चौपाल में बैठते थे और इंतजार रहता था प्रोग्राम का और अपने अपने मतलब के। तो बात मैं गांव से ही अगर करूं कि आज जो साइंस ने नई नई तरक्कियां ज़राअत के शोबे में की हैं, उसमें मालूमात फराहम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया रेडियो होता था, जो किसानों को बताता था आप कौन सी खाद आज दें, कौन सी फसल कौन से मौसम में,
1: और ये खिदमत आज तक आकाशवाणी
0: और वो खिदमत आज तक अंजाम
1: मुख्तलिफ प्रोग्राम।
0: इसी तरीके से साइंस का शोबा, इसी तरीके से तिब्बी शोबा
1: जी,
0: इसी तरीके से
1: मनोरंजन,
0: हाँ कानूनी शोबा, फिर मनोरंजन के लिए आकाशवाणी के पास कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें हम देखते हैं
1: नई और पुरानी फिल्मों के गीत हैं।
0: हाँ, अगर बात आकाशवाणी की हो रही है तो बिना की गीतमाला के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता।
1: अमीन सियानी साहब का नाम उनके साथ हमेशा के लिए अमर है।
0: कितने ही एंकर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को दर्ज करा लिया तारीख में और उनका नाम हमेशा हमेशा रहेगा जब तक कि आकाशवाणी का नाम रहेगा। उनमें एक नाम अमीन सयानी साहब,
1: अमीन सयानी साहब का,
0: ऐसे ही अजरा कुरैशी एक नाम है जो उर्दू सर्विस में मशहूर एंकर थी और उनकी जो आवाज थी वो एक तरह से ऐसा लगता था कि जादू सा कर रही है समाज तो पर।
1: अमीन सयानी साहब का तो जब नशियात शुरू होती थी रेडियो सैलून से और वो कहते थे भाइयों और बहनों अपनी मखसूस आवाज में, तो उसकी एक कशिश जो थी वो तमाम लोगों को अपनी जानिब
2: बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, इसी तरह से कुछ और मोतबर नाम जिन्होंने अपनी आवाजों के जरिए, अपनी खिदमात के जरिए आकाशवाणी में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया, जैसे जुबैर रिजवी साहब, मोहम्मद अली मौज साहब, मनदीप कौर, सुरेंद्र राजेश्वरी, असीम सक्सेना, जिन्होंने खासकर हम कहें हमारे रामपुर रेडियो मरकज से अपनी मखसूस आवाजों ऐसी पहचान अपनी खिदमात की दी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। कलियां प्रोग्राम के चीकू भैया, रजनी दीदी, बच्चों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा याद रहेंगे। उनके लिए तो ये कहना बजा होगा कि हम भूल सके हैं ना तुझे भूल सकेंगे, तू याद रहेगा हमें, हाँ याद रहेगा। परवेज साहब, आपके भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहे होंगे जो आपने पसंद किए होंगे या आपके जमाने में आपके बड़ों ने आपको खुसूसन सुनवाए होंगे और उससे आप कहीं ना कहीं मुस्तफीद भी हुए होंगे।
2: देखिये डॉक्टर साहब ने जो अभी बात कही कि आकाशवाणी जो 90 साल गुजर गए उस वक्त टीवी वगैरह नहीं थे, मोबाइल नहीं थे और इतने अखबारात भी नहीं थे, लेकिन आकाशवाणी के जरिए तमाम रंग की जानकारियां, तमाम रंग के प्रोग्राम, जिसमें युवा वाणी भी हो, कृषि जगत भी हो, कानूनी जानकारी भी हो और तमाम ऐसे अवेयरनेस बच्चों के प्रोग्राम हुआ करते थे, उर्दू प्रोग्राम हुआ करते थे, शेर शायरी का माहौल हुआ करता था, तो ये जो तहजीब और अदब हमने उस वक्त सीखा है वो रेडियो से सीखा है
1: बिल्कुल।
2: और अब तो चूंकि बहुत चीजें आ गई हैं उससे लोग सीख रहे हैं, लेकिन रेडियो की अपनी जगह एक अहमियत है।
1: सबसे बड़ी चीज ये कि रेडियो से जो चीज भी नश्र होती है वो बिल्कुल सही होती है और उसमें किसी तरह का मिलावट का कोई अंदेशा नहीं।
2: देखिये आजकल जैसे भ्रामक समाचार होते हैं जो दूसरों पे इतना यकीन नहीं किया जा सकता,
1: सोशल मीडिया के जरिए से जो,
2: लेकिन रेडियो पे आज भी यकीन है
1: जी हाँ,
2: कि भाई ये रेडियो में आया है, ये हमने सुना है, ये खबर आई है,
1: तो मुस्तनद होती थी।
2: जी बिल्कुल, वो आज भी है ऐसा
1: जी हाँ। इसी तरह डॉक्टर साहब, हमारी जुबान उर्दू, इसके फरोग में भी रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। रेडियो से नश्र होने वाली

0: जी
1: हिंदी में मुरसाला सारंग के नाम से और उर्दू में आवाज के नाम से
0: आवाज के
1: शायरों
0: नाम।
1: के तमाम प्रोग्रामों की तफसील हुआ करती थी और कारीन उसे पढ़कर मालूम उन्हें हासिल होती थी कि कौन सा प्रोग्राम किस वक्त आता है, कौन पेश करता है, किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसमें क्या मौजूदात होते हैं, और वो उसी के मुताबिक अपनी पसंद के प्रोग्राम ढूंढकर उनको सुनने की कोशिश किया करते थे।
0: जी
1: लेकिन आज बदकिस्मती से वो रसाइल भी बंद हो चुके हैं।
0: जी
1: तो हमारा नई नस्ल को यही पैगाम है कि देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत से शॉर्टकट्स हैं आपके पास मालूमात पहुंचाने के, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तमाम मालूमात बिल्कुल मुस्तनद हों।
0: जी हम AI के दौर में हैं और यहाँ
1: बिल्कुल
0: बहुत सी मालूमात हम तक जो पहुँचती हैं वो गलत होती हैं।
1: गलत होती हैं, ज्यादातर चंद ही चीजें उसमें सही होती हैं, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं,
0: जी
1: मिर्च मसाला लगाकर की जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने चैनल्स को चलाना होता
0: चलाना
1: है।
0: है।
1: उसके मुकाबले अगर आपको सही मालूमात हासिल करनी है तो फिर रेडियो की तरफ हमें लौटना होगा और हमें इसकी मकबूलियत के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। तमाम सामीन से भी हमारी गुजारिश है कि आप खुद भी पूरे तवज्जो और पूरे शौक के साथ रेडियो सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनवाइए, उनके अंदर भी इसे सुनने का शौक पैदा करें।
0: जी
1: और अब तो बहुत आसानी है, आपको कहीं जाकर जॉली का, मर्फी का कोई रेडियो ढूंढने की जरूरत नहीं
0: हर
1: है,
0: मोबाइल में रेडियो
1: हर
0: मौजूद
1: मोबाइल
0: है।
1: के अंदर रेडियो मौजूद है। आप गूगल पर जाइए, AIR, जहां का भी आपको सुनना है, नजीबाबाद, रामपुर, जालंधर, लाइव डालिए और किसी भी वक्त आप रेडियो की नशरियात
0: जी
1: सुन
0: बहुत
1: सकते हैं।
0: सहूलियत है। दूसरी
1: और
0: बात ये
1: कहीं भी आपकी
0: फ्रीक्वेंसी
1: जेब
0: बहुत
1: में,
0: अच्छी हो गई है।
1: फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, हर वक्त रेडियो आपकी जेब में है, जहां आप चाहें, जब चाहें आप रेडियो सुन सकते हैं। इससे ज्यादा बेहतरीन और मुस्तनद मालूमात आपको कहीं से भी हासिल नहीं हो
0: सही
1: सकती।
0: बेशक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और आखिरी बात अगर वक्त इजाज़त
1: जी
0: दे
1: जी
0: रहा हो तो
1: जी
0: मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो हमारा उर्दू ज़बान से लगाव कम हुआ
1: जी
0: और ख़त्म सा होता जा रहा है, अगर हम रेडियो के प्रोग्राम सुनेंगे तो यकीनन हमें
1: बिल्कुल
0: उर्दू ज़बान से, अपनी मादरी ज़बान से, और एक जो उर्दू एक तहजीब है उस तहजीब से रूशनास होने का फिर मौका
1: फिर
0: मिलेगा।
1: मौका
0: बिल्कुल
1: मिलेगा।
0: सही
1: और डॉक्टर साहब, उर्दू के साथ साथ अगर हम इसकी तमाम नशरियात की, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश की खबरें सुनते रहें, तो तीनों ही जबानों के बेहतरीन अल्फाज, तलफ्फुज और उसकी
0: बेशक
1: ग्रामर, उसके बोलने का
0: बेशक
1: अंदाज सब हमारा बेहतरीन होगा मुस्तनद मालूमात के साथ साथ। तो हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब और जनाब परवेज खान साहब इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। जी तो चाहता है कि रेडियो की बातें करते रहें, अपने माजी में खो जाएं, अपने बचपन को याद करें और उन तमाम प्रोग्रामों की तफसील से बात करें, लेकिन वक्त हमें इतनी इजाजत नहीं देता। इसलिए बस यही कहना पड़ेगा कि बस ए ख्याले यार, बहुत थक गया हूं मैं, यादों का सिलसिला तो कहीं टूटता नहीं। तो अपनी मेजबान रबाब अंजुम को इतने ही पर इक्तफा करते हुए इजाजत दें, अलविदा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं विभा विश्वास। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विभा विश्वास को। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में इनके स्वर में ये गीत।

विभा विश्वास के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोरे भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है।

0: इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोक माधुरी कार्यक्रम। लीजिए सुनिए राधेश्याम कुशवाहा और साथी के स्वर में ये देवी गीत।

लोकमाधुरी कार्यक्रम में अभी आपने सुना राधेश्याम कुशवाहा और साथी के स्वर में ये गंगा गीत। लीजिए सुनिए रेखा सेन के स्वर में ये देवी गीत।

लोकमात्री कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रेखा सेन के गाए लोकगीत। इसी के साथ लोकमात्री कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सब प्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत

0: बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का, और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
0: जी, एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
0: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
0: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमृषि, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
0: जी,
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सब

0: से पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
7: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 88004444।

0: 1-800-550-5519 और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इंकार भी नहीं लगी। अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बढ़िया ही रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने

0: वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
1: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
2: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
1: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
1: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
1: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा,
1: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
1: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
7: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
1: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ,
8: हाँ,
7: हाँ,
8: सब तैयार हैं।
7: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
8: नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
9: ये है जंगल के उपकार,
10: मिट्टी

0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली, शर्म आनी चाहिए तुझे।
2: आगे बढ़ो।
3: अरे कहां से?
2: मिनट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
3: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम, एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
4: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
2: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है, यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
5: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि आले।

एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन EIR ऐप पर पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपने दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ।

कुछ चेहरे वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, पर कुछ सितारे हर दौर में और भी चमक जाते हैं। ऐसी ही एक फनकारा जिसने हर किरदार में जान भरी है, नाम है तब्बू, जिसने खामोशी में भी कहानी कह डाली। तबस्सुम फातिमा हाशमी यानी तब्बू ने कई तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला भाषा एवं साथ ही एक अमेरिकी फिल्म में भी काम किया है, लेकिन हिंदी भाषा की फिल्मों ने उनके अदाकारी के परवाज को एक नई उड़ान दी।

जावेद अख्तर की गीत रचना अनु मलिक का संगीत, कुमार सानू और चित्रा की आवाजें। फिल्म विरासत का गाना है ये।

और ऐसी फिल्मों में उनकी भूमिका भी बहुत छोटी रही है, मसलन बॉर्डर, साजन चले ससुराल, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं और जीत जैसी।

व्यावसायिक तौर पर सफल फिल्मों में उनकी उपस्थिति कम ही रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर रुपए जुटाने की बजाय कहीं अधिक आलोचनात्मक सराहना जुटाती है।

कविता कृष्णमूर्ति और सखियों की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं जीत फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा समीर ने, धुन तैयार की नदीम श्रवण ने।

माचिस, विरासत, हू तू तू, अस्तित्व, चांदनी बार, मकबूल, चीनी कम, अंधाधुन, दृश्यम सदी की फिल्मों के जरिए अदाकारी की इतनी विविधता प्रस्तुत की तब्बू ने कि देखने वाले

अंधाधुन। दृश्यम सदी की फिल्मों के जरिए अदाकारी की इतनी विविधता प्रस्तुत की तब्बू ने कि देखने वाले बस देखते रह गए। मीरा नायर की अमेरिकी फिल्म द नेमसेक में भी उनके लीड रोल में काफ़ी तारीफ हासिल हुई।

अपनी फिल्मों एवं भूमिकाओं के मामले में काफ़ी चुनिंदा मानी जाने वाली इस अभिनेत्री तब्बू का कहना है कि मैं वही फिल्में करती हूं जो मुझे भावुक बना दें, एवं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि फिल्म की यूनिट एवं निर्देशक मुझे प्रभावित करने चाहिए।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं गुलजार की गीत रचना, विशाल भारद्वाज का संगीत, फिल्म माचिस का गाना है ये। और बड़ी सादगी, बड़ी मासूमियत दिखी

जानी मानी सिने एक्ट्रेस तब्बूर पर केंद्रित आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन EIR ऐप पर अपने दोस्त उज्जवल सिन्हा के साथ। कभी मासूमियत की छांव बनी, कभी दर्द का आईना, हर किरदार में दिखा उनका हुनर नगीना, कभी हंसी की हल्की धूप, कभी जज्बातों की काली घनेरी अंधेरी रात रही। हर किरदार में तब्बू जैसे जिंदगी के तमाम पहलुओं की बात करती नजर आई। न सिर्फ शोहरत, न सिर्फ तालियों का सहारा, तब्बू ने मेहनत से बनाया अपना बुलंद सितारा।

इंदिवर की गीत रचना अनुमल का संगीत साधना सरगम और सखियों की आवाजें फिल्म विजय पाठक।

आपको बताते चले, साल 1994 में तब्बू को इसी फिल्म विजय पथ में सर्वश्रेष्ठ महिला नवागंतुक अवार्ड मिला। 1996 में माचिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। साल 1997 में विरासत के लिए फिल्म फेयर समीक्षक अवार्ड। साल 2000 में फिल्म अस्तित्व के लिए अपना तीसरा फिल्म फेयर समीक्षक अवार्ड मिला। साल 2001 में मधुर भंडारकर निर्देशित फिल्म चांदनी बार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल किया तब्बू ने।

पुरस्कारों से सजा सफर, पुरस्कारों से सजा सफर, सम्मान जिनके कदम चूमे। हर किरदार के साथ उनके चाहने वाले और

0: आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम जानी मानी सिने तारिका तब्बू पर केंद्रित था। अब इस कार्यक्रम से अपने होस्ट और दोस्त उज्जवल सिन्हा को इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपक कुमार राय।
1: एहसास की धूप छाँव में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी की गीत रचना शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम मेरे हुजूर।

साहिद की गीत रचना, राजेश रोशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम काला पत्थर।

आनंद बख्शी की गीत रचना अनु मलिक का संगीत, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें, फिल्म का नाम आरजू। यही है फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के गाए आरजू फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी आप हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। 12 बज रहे हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से

0: पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
3: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of the summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
2: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening international partnerships. In the article, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. They emphasized that at the same time, the need to reform global governance institutions to reflect contemporary realities has become impossible to ignore. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November

आज रात 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर विंध्यवासिनी त्रिपाठी की वार्ता, यत्नम बिना रत्नम न लभ्यते। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद 12:15 पर पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन। शास्त्रीय संगीत के रात्रिकालीन कार्यक्रम में 10:30 पर आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन। आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश 12:30 से प्रसारित किया जाएगा। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी रश्मि टंडन के गाए लोकगीत और गरिमा यादव की वार्ता का विषय होगा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव। दो बजकर 30 मिनट पर होगा लोकगीत का कार्यक्रम।

धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5 बजे सुनिएगा छेदीलाल और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं रोज की तरह शाम 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे बाबूलाल दिवाकर के गाए लोकगीत। सुगम

संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर आपको सुनवाएंगे कीर्ति चौधरी के गाए भजन और गीत। रात 8 बजे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। सबरस कार्यक्रम का प्रसारण समय रात्रि 8:30 और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां लेकर आएंगे रात 9:30 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की रूपरेखा।

कार्यक्रम का प्रसारण समय रात्रि 8:30 और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां लेकर आएंगे रात 9:30 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम की रूपरेखा।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सरोद पर बजाया राग मुल्तानी, वादक कलाकार पंडित ब्रिज नारायण।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रजनारायण का सरोद पर बजाया राग मुल्तानी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: नितेश आर्या, प्रयागराज से।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हम राही प्यार के गाने बोल मेरी नींद जितनी भी खोई लौटा दो।
0: वो मेरी नींद, वो मेरा चैन, मुझे लौटा दो। और आपने कह दिया जितनी भी खोई है, मतलब काफी मात्रा में खो गई आपकी नींद है, आपने ऐसे बोला कि जितनी खोई है सब लौटाओ, वापस करो। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी इस नींद को लौटा रहे हैं आपके इस गीत के माध्यम से। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार के।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बता दीजिए।
1: सोनू जायसवाल साहिबगढ़ प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: काश आप हमारे होते।
0: इसका गीत के बोल बता दीजिए।
1: कोई सा भी।
0: तो हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए सुनवाते हैं काश आप हमारे होते फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम सुहाग फिल्म का।
0: गाने के बोल भी बता दीजिए।
1: तेरी रब ने बना दी जोड़ी,
0: तू हाँ कर या ना कर यारा।
1: जी
0: अच्छा, तो भाई रब ने जब जोड़ी बना देते हैं तो आपके हाँ और ना का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
1: नहीं।
0: ये गीत ही तो यही कहना चाह रहा है। तो हम आपको सुहाग फिल्म का ये गाना सुनवाने जा रहे हैं रोशनी जी, लीजिए

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामदयालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी
0: नमस्कार, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म क्रांति का गीत सुनना चाहते हैं, चना जोर गरम बाबू मुलायम मजेदार।
0: जी तो क्रांति फिल्म का ये गीत तो आपको हम जरूर सुनवाएंगे। ये बताइए, आपको किसी अपने परिचित के रिश्तेदारों के नाम तो नहीं लेने हैं?
1: नहीं लेने हैं। जी
0: बताइए।
1: अजीत कुमार मिश्रा, सुशील कुमार, सुनील कुमार, राजन यादव, छोटू, टिंकू और रिंकू और बालेश्वर और राजेश कुमार मिश्रा।
0: तो आपको सुनवाते हैं क्रांति फिल्म का ये गाना।

0: फरमाइश। कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर।
0: जी विकास जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है चाहत।
0: जी
1: ना दिल को सुकून, मतलब ये मैडम जी इसके बोल याद नहीं आ रहे हैं।
0: अच्छा, ठीक से याद नहीं आ रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ हाँ हाँ।
0: तो चाहत फिल्म का ये गाना आपने जो सुनना चाहा है विकास जी, तो सुनवाएंगे ही। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत दिनों से बताया नहीं कि आप कहाँ कहाँ भ्रमण कर आए।
1: जी अभी तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं।
0: अच्छा, छत्तीसगढ़ से फोन कर रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ हाँ हाँ।
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए अब आपकी पसंद को पूरा करेंगे।
1: जी, और आपका कार्यक्रम तो सुनते ही रहते हैं।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो विकास जी, चाहत फिल्म का ये गीत हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मोहम्मद अयूब चटिया प्रयागराज से नियमित श्रोता आपका।
0: जी बहुत नियमित श्रोता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद फोन किया अयूब जी आपने।
1: क्या काम धंधा इतने बढ़ गए हैं ना।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बिजी हो
1: गए हैं। प्रोग्राम आपका वो जो लेटर वाला प्रोग्राम, व्हाट्सएप वाला, ये सब सुनते रहते हैं।
0: आपकी पसंद
1: भी पड़ती है, बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा अयूब जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी पसंद का कार्यक्रम अयूब जी को बेहद पसंद है। तो चलिए बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: एक फिल्म आई थी अमित जी की
0: जी,
1: और
0: जी।
1: उसमें कमाल थी साथ में, अनजान साहब को गीत है और कल्याण जी अनंत का म्यूजिक, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में गाना है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई।
0: वो घड़ी आ गई और ये घड़ी आ गई कि अब अयूब जी को
1: घड़ी आ गई। आज हमको इंतजार था इस घड़ी की, फोन मिल जाए
0: कि अयूब जी को डॉन फिल्म का ये गीत सुनवा दे। तो अयूब जी किसी का नाम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
1: हमारे मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं और आपके जाने माने लिसनर भी हैं।
0: जी जी जी,
1: राज बहादुर कनौजिया, राम बाबू कनौजिया, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद आबिद साहब।
0: तो आपको सुनवाते हैं डॉन फिल्म का ये गाना।

0: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, एक बजने वाले हैं समाचारों की, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
4: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी

0: लक्ष्मण ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना मैं आपको विश्वास से कहता हूं ये हमारी गारंटी है।
1: इंडिया एंड स्वीडन हैव एम्फसाइज्ड दैट कोऑपरेशन विल डिफाइन द पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड अ सस्टेनेबल फ्यूचर एट अ मोमेंट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of growing geopolitical uncertainty, energy insecurity and economic fragmentation, the world faces a defining choice of either retreating into narrow national approaches or strengthening partnerships. In the article published today in a national daily, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the four states, along with senior police and administrative officials, are also attending the meeting. The Supreme Court today refused to recall its earlier directions that stray dogs picked up from public places must not be released back after vaccination or sterilization. A bench headed by Justice Vikram Nath dismissed pleas seeking modification of the November 2025 order and directed authorities to confine such dogs to shelters. The court cited deeply disturbing incidents of dog attacks on children, elderly persons and travellers and said the menace had reached critical public areas, including airports and residential colonies. Petrol and diesel prices have been hiked by around 90 paise per litre today, marking the second increase in less than a week. In Delhi, petrol

0: now cost 98.64 rupees per litre, while diesel is priced at 91.58 rupees. The latest hike comes days after a 3 rupee per litre increase on May the 15th, the first fuel price revision in over 4 years. The rise follows a sharp surge in global crude oil prices amid the Iran conflict and disruptions in the Strait of Hormuz. Defence Minister Rajnath Singh has called on President of Vietnam Tho Lam in Hanoi and reaffirmed India's commitment to further deepen defence cooperation between the two countries. The Defence Minister said in a social media post that cooperation is a key pillar of the enhanced comprehensive strategic partnership between the two countries. He said India and Vietnam share a strong bond rooted in mutual trust, shared values and close cooperation in defence, security and regional stability. Mr. Singh also held a bilateral meeting with his Vietnamese counterpart, General Phan Van Chiang. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% in the afternoon session. Today, the Sensex rose 262 points to 75,577, while the Nifty added 75 points to 23,725 when reports last came in. On the sectoral front, IT, realty and utility stocks were driving the market higher. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी ट्रिपल एस सी 2024 के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर सिलेक्टेड 932 उम्मीदवारों को तकर्री लेटर तकसीम किए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्री लेटर तकसीम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ रियासत को मुख्तलिफ हलकों में आगे बढ़ाने में रियासत के होनहार नौजवानों ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में आज रियासत मुल्क के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है।
2: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
1: हुकूमत ने कहा है कि मगरबी एशिया तनाज़ु की वजह से दरामदाद में रुकावट के बावजूद मुल्क की तेल रिफाइनरी फैक्ट्री मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के पास खाम तेल का वाफिर जखीरा है। मगरबी एशिया में हाल के हादसात पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कुदरती गैस का वाफिर जखीरा है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: दरअसना हुकूमत ने यूट्यूब के उन वीडियो की तरदीद की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 दिनों के तेल का जखीरा बचा है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट जांच यूनिट ने दावा को खारिज करते हुए बताया है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिनों के खाम तेल का जखीरा है। दरअसना उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की फराहमी पूरी तरह मामूल पर है। अवामी जुमरे की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वाजे किया है कि रियासत में ईंधन वाफिर मकदार में है और किसी भी तरह की घबराहट या ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक जानकारी सिर्फ सरकारी जराए से ही हासिल करें। जेठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर दारुल हुकूमत लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का इनेकाद हो रहा है। मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की जानिब से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारे मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस मौके पर आज आकाशवाणी लखनऊ में भी बजरंग बली की पूजा के साथ भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है, जहां शाम तक प्रसाद तकसीम किया जाएगा। रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। महकमा मौसम

0: हुकूमियात ने आज से 22 मई तक रियासत के बेशतर इजला में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री के पार जाने के इम्कान है। मौसम के मिजाज को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को पूरी तरह अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं। इस दौरान मरकजी वजारत आयुष ने शदीद गर्मी और लू के हालात से निपटने के लिए अवामी सेहत मशावरात जारी किया है।
1: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दरियासना महकमा मौसम

0: लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दरअसल महकमा मौसमियात ने आज से चार दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आगरा, औरैया, बलिया, बांदा, भदोई, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी के कई मकाम पर हीटवेव से लेकर शदीद हीटवेव चलने के इम्कान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम पनघट।

0: जमुना, अरे जमुना बहनी, हम कहा तुमसे राम राम।
1: राम राम चंपा, और अपन पनघट कार्यक्रम सुने बैठी सभी श्रोता बहनी हरन के
0: राम राम।
1: चंपा,
0: हाँ जमुना बहनी,
1: देखा था बहनी कि तू जब आवत रहो
0: हाँ
1: तो इतना जौन बा पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी रहो, हम थोड़ा थोड़ा तो है अखिया से पहचान पाए। हम सोचे भैया कि ये आवत के बाटे तो हम चिन्ह भाई ना किया तो के।
0: अरे जमुना बहनी,
1: हाँ
0: इतना घाम होत बा कि बाहरे निकरे मन नहीं कर।
1: अरे पूछा जिन बहनी,
0: एकदम जैसा लागत है उबलत बाटे।
1: बिल्कुल उबलत बा,
0: अगर देखो पानी डाल दो कहूँ थोड़े के एक गिलास तो तुरंत सूख
1: सूख जाता। और देखा तू जौन बाटे ने, तू देखा थोड़ा देर से आओ,
0: हाँ?
1: हम देखा ई घामे के ई लूक के कुल देखत भाई बहनी, हम
0: हाँ,
1: तो सवेरे
0: जल्दी निकल
1: सवेरे निकल गया हाँ। कि ताकि है जौन भाई जौन इतना तेज घाम बाटे लगे ना हमें, इसलिए कि जब घमवा लागत है कपारे पर तो लगत है कि कुछ सुझावे नहीं करो।
0: सही कहा तू बहनी, पूरा शरीर ही एकदम झन्नाई जाता है घाम से पूरा एकदम।
1: और देखा कितना पानी पिया, कितना छाया में रहा, लेकिन ऐसे लागत है कि कहाँ का गर्मी आई गई बटे।
0: बिल्कुल सही कहा तू बहनी।
1: और देखा अब भाई हम आवत रहे तो हम देखा तो हूँ देखे हो वो कि देखा बीच बीच पर जहाँ जहाँ चौराहा रहत है
0: हाँ हाँ जहाँ लाल बत्ती हरी बत्ती जलत
1: हाँ, जलत है
0: सड़कन पे।
1: हाँ तो हुआ देखा कहीं कहीं देखा हरा वाला जो कपड़ा,
0: कपड़ा
1: होता
0: हाँ,
1: लगाए
0: तान
1: दिए
0: दिए
1: हैं
0: पूरा
1: हाँ, काहे कि इतनी तेज धूप होता है चंपा कि मनाई एक मिनट जौन बा धूपे में खड़ा नहीं हो
0: हाँ,
1: सकता
0: चल
1: था।
0: लाल बत्ती आ गया है, वहाँ
1: हाँ
0: पहुंची आदमी लाल बत्ती आ गई
1: हाँ
0: तो ओका धूप ना लगे,
1: धूप न लगे। और अगर इतनी तेज धूप बाटे कि अगर मनाई 5 मिनट जौन बा खड़ा हो जाए चंपा तो चक्कर खाए के गिर पड़े
0: बिल्कुल सही कहा
1: है ना।
0: तू।
1: और देखा अभी वहाँ दिना देखा जवानी आई रही तो बहनिया इतना माने हमार सबका इतना हम समझ ले तो उसे का बताई चंपा कि अपने इतनी बड़ी जिंदगी में
0: हाँ,
1: कभी
0: अपनी
1: इतने
0: इतनी
1: ऐसा
0: उम्र में
1: आनी
0: देखे
1: आनी नहीं देखे
0: कर।
1: रहे। और हमरे अगले बगले 2-3 जने के ऊपर का छर दीवारी गिर गए,
0: हाँ,
1: कितना
0: पेड़
1: देर
0: कितना गिर, उखड़
1: कितना
0: उखड़ पेड़ गिर गए।
1: उखड़ उखड़ के पेड़ गिर गए तो समझ ले कि कुल ई घाम काही कितना तेज इतना माने काही के होता।
0: पेड़ पौधा कमी की वजह से होता है
1: पेड़
0: और कहे।
1: पौधे की कमी की वजह से काहे कि लोग देखा बड़ा बड़ा जैसे बिल्डिंग ताने जाते हैं हाँ
0: हाँ,
1: कंपनी खोले जाते हैं
0: पेड़ काटा जाता
1: पेड़
0: है।
1: काटे जाते हैं, अगर पेड़ बहनी ना रहे तो सोचा
0: अगर पेड़ ना
1: ये
0: रहे तो समय पे बारिश ना हुई,
1: हाँ हाँ
0: समय पे कोनो चीज ना हुई,
1: हाँ
0: पेड़ ना
1: बारिश ना हो तो
0: आप
1: गर्मी
0: सब।
1: तो आपे आप तनी चली जाए।
0: सही कहा तू बनी।
1: तो जब ये पेड़ पौधन का बात होत रही तो हम सोचत रहे कि कसना आज अपने बहनी हरन से यही विषय पे बात कही कह लीन जाए
0: कहे
1: कि
0: नहीं,
1: वृक्षारोपण का महत्व
0: बिल्कुल।
1: माने पेड़े का हमारे जीवन में का महत्व बा एकरे बारे में। तो देखा चंपा जो वृक्ष जौन बाटे माने प्रकृति का वो अमूल्य उपहार है
0: हाँ,
1: जौन हमके न केवल छाया और फल देत है बल्कि जीवन के लिए आवश्यक शुद्ध वायु भी प्रदान करत है।
0: बिल्कुल सही।
1: और आज देखा चंपा बढ़ते प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग और वायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का संतुलन बिल्कुल बिगड़ रहा बा। ऐसे
0: हाँ,
1: समय में अगर वृक्षारोपण मानव जीवन और पर्यावरण की

0: की रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी उपाय बन गया बा। यही लिए कहा भी गावा ना कि एक पेड़ जौन बा 100 पुत्रों के बराबर
1: समान होते बिल्कुल।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: और देखा जमुना बिल्कुल सही कहू जमुना बहनी। और देखा वृक्ष जोन है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण कई के ऑक्सीजन छोड़त है। मनुष्य और अन्य जीव जिनके जो जीवन होते हैं वो ऑक्सीजन ही बहुत जरूरी होता है
0: उनके लिए भाई सब के चाहे जीव जंतु हो चाहे
1: मनुष्य सबके लिए
0: ऑक्सीजन जरूरी।
1: और देखा बहनी पेड़ का जो है वातावरण शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक बना रहा था।
0: बिल्कुल सही कहा था। और देखा चंपा पेड़ पानी बरसावे में सहायक होते हैं और तापमान के नियंत्रित रखा थे।
1: बिल्कुल सही।
0: देखा जंगलन के कटाई से सूखा बाढ़ और गर्मी जैसी समस्याएं बिल्कुल बढ़ते जाते हैं और अधिक वृक्ष लगाए से जोन बका हो तो पर्यावरण जोन बा संतुलित
1: रहा था।
0: बिल्कुल। हाँ।
1: और देखा जमुना बहनी वृक्ष धूल धुआं और जहरीली जो गैस होता ना
0: हाँ।
1: वो सब के अवशोषित कई के वायु प्रदूषण कम करत है
0: हाँ।
1: और जो ध्वनि प्रदूषण जो होता है
0: वो के
1: भी नियंत्रित करत
0: हाँ।
1: है
0: हाँ।
1: और शहर में हाँ। हरियाली बढ़े से वातावरण शांत और स्वच्छ रहा था।
0: बिल्कुल सही कहो चंपा। और देखा पेड़न का जड़ जौन होता ना बहनी वो मिट्टी के मजबूती से पकड़े रहा था। देखा जब बाढ़ उड़ावत है पानी रुका रहा है तो वो जौन वो जो जड़ होता वो पानी के जौन बा अपने अंदर जौन बटे रखा था तो उसे क्या होता ना कि कटाव नहीं हो पावत।
1: हाँ।
0: कटाव नहीं हो पावत तो वृक्ष वर्षा के जल के भूमि में समाहित करे में मदद भी करा था और जैसे भू जल जौन बा स्तर हमारे सबका बना रहा था।
1: बिल्कुल। और देखा जमुना बहनी पेड़ जौन होता है
0: हाँ, हाँ।
1: तरह के पक्षी जानवर के घर होते हैं।
0: सही कहो।
1: अगर पेड़ ना रही
0: हाँ, हाँ।
1: तो कई तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो विलुप्त हो जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और ई के बरे
0: हाँ।
1: जैव विविधता के हाँ। रक्षा के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक होता है।
0: बहुत आवश्यक है चंपा। और अगर आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ों के लकड़ी फल औषधियाँ रबर कागज आदि सब जो बा ना ये इन्हीं से जौन बा हमारे वृक्षरण से जौन बा प्राप्त होता है। अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए चंपा तो बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगल का अंधाधुंध जौन बा कटाई हो रही बा चौड़ी सड़क भवन और उद्योग बनावे जाते हैं तो ऐसे ये लाखों पेड़ काटे जाते हैं जेकर परिणाम ये है कि पृथ्वी का तापमान लगातार जौन बा बढ़ा चला जाता और प्राकृतिक आपदाएं हमेशा देखा आवत है।
1: बिल्कुल। और देखा जमुना बहनी
0: हाँ।
1: इस सब के लिए
0: हाँ।
1: प्रत्येक व्यक्ति के हर वर्ष एक पौधा जरूर लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: हर जगह वृक्षारोपण अभियान चलावे चाहिए
0: हाँ, हाँ।
1: और लोगन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलावे चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
1: काहे कि जो वृक्ष मानव जीवन के आधार होते हैं
0: जी जी जी
1: इके बिना पृथ्वी पर जीवन के
0: कल्पना
1: भी नहीं
0: की जा सकत।
1: यदि हम आए वाली पीढ़ी के सुरक्षित और सुंदर भविष्य देवे चाहिए
0: हाँ तो अधिक से अधिक वृक्ष लगावे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ और वृक्षारोपण एक सामाजिक कार्य ही नहीं चंपा बल्कि मानवता के प्रति हमार सबका कर्तव्य है। इसलिए हमें संकल्प लेवे के चाहिए कि पेड़ लगाएं जीवन बचाएं। तो देखा आओ मिलकर यह अभियान चलाएं
1: धरती को फिर से हरा भरा बनाएं
0: एक एक पेड़ हम सब लगाएं
1: स्वस्थ और सुंदर भविष्य पाएं।
0: हाँ तो देखा बहनी हरन से देखा बातचीत हो गई। अब सोचा था कि एक के जौन बा नीक के जौन बा गौना ही हो जाए तो देखा रश्मि टंडन से सुना जाए दादरा
1: तो सुन लिया जाए।

0: कैसन लगी?
1: बहुत आए दैया सही में ना मोरे मन के
0: कि मंगावे कुछ और लिया दे कुछ और है ना,
1: लेकिन लावत रहे डर के
0: मारे, डर के मारे ले आवत रहे हैं
1: भले कुछ और ले आवत रहे।
0: तो देखा चंपा
1: हाँ
0: कि गाना तो हम सब सुन लिया,
1: बिल्कुल
0: गीत सुन लिया गया, लेकिन देखा ये जोन आजकल हमारे सबके पास मोबाइल बा,
1: सोशल मीडिया
0: तो ये जोन बाटे एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी बा,
1: हाँ।
0: और एक तरह से देखा जाए तो
1: ऐसा लोगों का इस्तेमाल करें
0: तो अच्छी चीज के लिए करें, लेकिन कहीं कहीं एक बहुत जौनबा दुष्प्रभाव भी होता है। अब आजकल देखा नान नान का देलन के देखा कि जौनबा मोबाइल ले ही
1: हाँ।
0: और कार्टून देखे लगी,
1: कार्टून देखे हाँ। हम
0: और अगर उनसे मोबाइल छीन ले
1: खेल
0: हाँ, हाँ, हाँ, और अगर उनसे छीन ले तो जौनबा हाथ पैर पटके लगा,
1: बिल्कुल।
0: तो एक मतलब ये बाकी देखा ये जो मोबाइल बटे जो
1: लत लग
0: जा था बहुत खतरनाक
1: होता ना, हम सब सोचते चलो 10 मिनट दे दी लड़का हो मांगा था और कद उ धीरे धीरे का होता आज हम दे दिए बिहान दे दिए फिर ऐसे दिए दे लत बन जाता
0: कि हमें एक आदत में शामिल हो जाता
1: है, जिद कर ले तो हमें मिल जाए, लेकिन हम सबके भी सतर्क रहे एक पड़ी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि बच्चे हम सब अगर जिद करते हैं तो हम सब कुछ और दे के खिलौना दे के कुछ और दे के बुलवाए दे उन्हें उनके साथ खुद खेल ली।
0: पहले के समय में देखा लड़की गुड्डा गुड़िया खेला है ना, मैंने पहले के जितना भी हम सब खेल खेलत रहे आज एकदम विलुप्त हो चुका है,
1: बिल्कुल।
0: और ये काहे के कारण
1: फोन
0: तो देखा यही से संबंधित एक है अपने कार्य।

0: कार्यक्रम में वार्ता है सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव और जानकारी देत बाटी बहनी गरिमा यादव, तो चला सुना
1: चला सुन लिया जाए।
2: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा और अभिन्न अंग बन चुका है, सोशल मीडिया। ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ाव और सूचनाओं को साझा करते हैं और एक नया आयाम समाज को देते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसके कई दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं जो हमारे समाज, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। सोशल मीडिया आज के दौर का एक डिजिटल रीढ़ है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म न केवल संचार के तरीके को बदलते हैं बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 50 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है जो इसे दुनिया में सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक बनाता है। लेकिन इस विशाल नेटवर्क के साथ कुछ गंभीर बड़ी चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को जोड़ने और सूचनाओं को तेजी से साझा करने का कार्य किया है, शक्ति दी है, वहीं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं जो हमारे देश, समाज और राष्ट्र को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। ये दुष्प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक ताने बाने, गोपनीयता, निजता और यहाँ तक कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। आइए हम इन सभी आयामों को एक एक करके समझते हैं और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव, सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ता बोझ सोशल मीडिया का सबसे गंभीर दुष्प्रभाव है और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसके चपेट में बहुत तेजी से आ रही है। युवा वयस्क सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कुछ छूटने का डर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वो अपने दोस्तों और समाज को पीछे छूट रहा है। इंस्टा जैसे बहुत सारी उस पर ऐसी तकनीकी है जो सोशल ताने बाने को बुनती है, फिर बाद में वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है जो समाज को, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को, व्यक्ति के व्यक्तिगत निजता को प्रभावित करती है। लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर और बहुत सारे युवा उससे प्रभावित होते हैं और बहुत सारे युवा और कई वर्ग के लोग अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। महिलाएं, अल्पसंख्यक ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और तस्वीरों को पोस्ट करना सोशल मीडिया पर और जिसके बाद उनकी शारीरिक बनावट को लेकर सैकड़ों अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की घटना ने सोशल मीडिया के ऐसे दुष्प्रभावों को चिन्हित किया है जिसपे विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिंतनीय है। कमोवेश सोशल मीडिया का उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। रात को देर तक जगना, काम में मन न लगना और व्यक्ति की पूरी जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो गई है, जिससे राष्ट्र के निर्माण में जो हमें योगदान देना चाहिए या अपने व्यक्तिगत विकास के जीवन में जो योगदान देना चाहिए या हम जो अपनी गुणवत्ता का अपने बौद्धिक चेतना से जो चिंतन कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो कर सकते हैं, हमारा ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया में व्यतीत हो रहा है और वो एक अनावश्यक समय बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के विषय को हम अगर बहुत गंभीर से चिंतन करें तो हमारे समाज के लिए बेहद ही खतरनाक है। हालांकि इसके कई लाभकारी प्रभाव भी हैं और हम सामाजिक ताने बाने को एक सकारात्मक दृष्टिकोण में जोड़ते हैं। हमारा सामाजिक ताना बाना, हमारा सांस्कृतिक ताना बाना और हमारा जो वैचारिक ताना बाना, वैचारिक बौद्धिक स्तर है, इससे बहुत बढ़ा है और बौद्धिक विकास में, बच्चों के विकास में और सामाजिक वातावरण में और एजुकेशनल एक माहौल, एक शैक्षिक जो वातावरण है उसको विकसित करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके दुष्प्रभाव के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण, अवसाद और चिंता, साइबर बुलिंग, ये सब चीज़ें हैं जो हम बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। सोशल मीडिया समाज को जोड़ने का भी काम करता है लेकिन सामाजिक सौहार्द और रिश्तों को कमजोर भी कर रहा है, सामाजिक अलगाव की स्थिति पैदा कर दी है

सोशल मीडिया की आगामी दुनिया में लोगों को इतना खोने का डर है, वास्तविक रिश्तों का महत्व तो हम खोते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम अगर देखें तो परिवारों के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए भी व्हाट्सएप या ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक ऐसी चीज़ों में आमने सामने संवादहीनता जो कायम हुई है, ये एक अध्ययन से पता चलता है। सोशल मीडिया समाज के ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। गलत सूचनाएं पैदा करना, भड़काऊ सामग्री और समुदायों के बीच तनाव बढ़ जाता है। सोशल मीडिया का जो गलत इन्फॉर्मेशन जनता तक जाता है, समाज तक जाता है, ये नकारात्मक विचार पैदा करता है। पारिवारिक विघटन का भी, सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है, इससे पारिवारिक विघटन भी होता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिवारिक रिश्तों में दरार आ रही है। तो कुछ दंपतियों में आपसी पारिवारिक ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, फिर लोग रील बनाते हैं, उसमें तमाम प्रकार के वो अपने पर्सनल विचारों से उनको देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। गोपनीयता और निजता और साइबर अपराध, जैसे हमारे निजी जीवन की निजता को वो उसका हनन कर देता है, वैसे ही गोपनीयता और साइबर अपराध को भी बढ़ावा देता है। उपयोगकर्ता अपनी निजी जानकारी, जैसे ही फोटो, स्थान और व्यक्तिगत विवरण बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। डेटा को चोरी करना, हैकिंग करना, ऑनलाइन ठगी करना और अपनी निजी निजता का हनन करना या राष्ट्र की किसी भी जानकारी का हनन करना, सोशल मीडिया ने शिक्षा को सुलभ बनाया है, लेकिन इसका जो गलत उपयोग है वो छात्रों की पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहा है। ध्यान को भटकाना, छात्र सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, बातें करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। इससे वो अपने समय का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं। आर्थिक दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिले हैं। सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है, सोशल मीडिया ने व्यवसायों को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके कुछ आर्थिक नकारात्मक प्रभाव भी हमको देखने को मिले हैं। जैसे उत्पादकता की कमी, ऑनलाइन खरीदारी की लत, जिसमें कभी कभी ठगी के भी मामले सामने आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है, और राजनीतिक दुष्प्रभाव भी हमें कभी कभी और देखने को मिलते हैं, और उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा, सोशल मीडिया का उपयोग आतंकवादी संगठनों और सामाजिक तत्वों द्वारा प्रचार और भर्ती के लिए किया जा रहा है। इससे हमारी राष्ट्रीय चीज़ों को सोशल मीडिया के गलत इन्फॉर्मेशन से कभी खतरा होता है, और कभी कभी कुछ मुद्दे भड़काऊ हो जाते हैं, राष्ट्र के लिए वो खतरा बनता है। और हमारे सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर भी सोशल मीडिया ने बहुत प्रभाव डाला है। उसके दुष्प्रभाव, अनैतिक सामग्री, सोशल मीडिया सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करता है, क्योंकि संस्कृति किसी राष्ट्र की धरोहर है, और संस्कृति हमारे विचारों का, हमारे रहन-सहन का और हमारे देश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। एक संस्कृति से ही किसी राष्ट्र का परिचय होता है। कोई राष्ट्र दूसरे देशों में जा कर के अपने शक्ति का, अपने धरोहर का, अपनी संस्कृति का प्रचार करता है, और जब सांस्कृतिक और नैतिक दुष्प्रभाव सोशल मीडिया का हमारी संस्कृति पर देखने को मिलता है, तो ये चिंतनीय और विचारणीय विषय है। सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास करना, जैसे कि हम पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में अकारण ही फंसते जा रहे हैं, बिना रीजन, बिना कोई कारण के प्रभावित हो जा रहे हैं, बिना उनके वैचारिक चीज़ों को मूल में समझे बिना हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय युवा अपनी संस्कृति की जड़ों से दूर होते जा रहे हैं, और उसके बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे हम जीवन शैली को उदाहरण ले लें और पारंपरिक परिधानों का उदाहरण ले लें, सामाजिक मूल्यों को हमारे कमजोर करते हैं, और हमारी जो संस्कृति की जो विशेषता है, जो महत्व है, उसका कहीं ना कहीं महत्व कम करते हैं और निजता का हनन करते हैं। और वैश्विक स्तर पर भी सोशल मीडिया ने दुष्प्रभाव अपना डाला है, और सूचनाओं को हिंसक तरीके से घटना में बदलना और एक गलत इन्फॉर्मेशन पैदा करना, क्योंकि वैश्विक स्तर पर फैलती हैं, या राष्ट्र के स्तर पर, गांव के स्तर पर, समाज के स्तर, किसी भी स्तर पर, किसी के विचार के स्तर पर उनका ऑथेंटिक होना बहुत मुश्किल होता है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार ने उठाया है। जैसे हमारी निजता का हनन न हो, इसे बहुत सारे सरकारी कानून बने हुए हैं। डिजिटल साक्षरता है, समय प्रबंधन है, सामग्री की निगरानी है, कड़े नियमों का नियमन है,
जागरूकता और शिक्षा है। और अगर हम सोशल मीडिया के निष्कर्ष

0: के तौर पर देखें कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से हमको कैसे बचना है, तो सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक वातावरण और जो हमारा पूरा जो जीवन शैली का जो पूरा एक वातावरण है वो सबको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर तरीके से प्रभावित करता है, जो समाज को जोड़ने और ज्ञान को फैलाने में भी सक्षम है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक रिश्तों की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। हमें इसका उपयोग संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से करना होगा। आइए हम सब मिलकर सोशल मीडिया की एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखें और इसका उपयोग करें, जो हमारे समाज के विकास के लिए योगदान दे, न कि उसे नुकसान पहुंचाए।
1: हाँ, देखा जून बाजू
2: गरिमा यादव बहनी कितना फरियाए
1: बताए
2: सोशल मीडिया के बारे में
1: बताए हैं। और देखा हमारे बहनी हरे सुने हुई हैं तो पर अमल भी करी हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो यही बात पे हम सोचे थे कि चलो रश्मि टंडन बहनी से एक के बहनी हरन के खेमटा सुना दिया जाए।
2: चला सुन लिया जाए।

0: जमुनाबाईंनी गाउन त एकदम जोरदार रही
1: मन खुश होइ गेल हां त ई बताओ कि बातचीत हमार सबके जौन बा चलत ही भी बाटे लेकिन हमार सबके त आधा समय त रसोईया
0: में बीत जात
1: है कि सोए के उठे नाही हम सब कि आंख मलत के सीधे रसोई में जात हां और जौन घरे के जौन बड़ा बुजुर्ग हैं वो सवेरे चाय का ऑर्डर देवे लगत है हां है ना कि हां जल्दी से चाय बना के लाइयो हां तो ई बतावा कि आज तू अपने रसोई घर से हमरे बहनी हरमीना का लेके आए हो
0: आज हम बहनी हरमीना ला है चुकंदर के कांजी
1: अच्छा हां कैसे बनाओ तू बहनी हमें काका सामान पड़त
0: है सामान है चुकंदर ले ले दुठू
1: अच्छा अच्छा
0: मतलब परिवार के हिसाब से भी जैसे बनाओ कि जितना
1: जीता हां भाई जितना परिवार है वही हिसाब से
0: परिवार या फिर जो हिसाब से जे बनावे चाहे और गाजर ले ले दुई
1: अच्छा
0: और पानी 1.5 लीटर ले ले
1: अच्छा अच्छा
0: और राई ले ले पीली वाली चाहे काली वाली 2 चम्मच
1: अच्छा
0: और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच और काला नमक स्वाद के अनुसार और सादा नमक भी ले ले थोड़ा सा 1 चम्मच जो उनके जरूरत हुए
1: मैं जितना मैंने सामान
0: वो हिसाब से ले ले
1: आवश्यकता अनुसार
0: अब बनावे के बारे सबसे पहले चुकंदर और गाजर के अच्छे से धोई के छील लें
1: अच्छा
0: अब यहाँ का छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और राई के दरदरा पीस लें अब एक टू कांच के जार ले लें या फिर मटका ले लें
1: अच्छा अच्छा
0: उसमें पानी भर लें उसमें चुकंदर गाजर और पिसा जो राई है नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दें
1: अच्छा तो जौन चुकंदर और गाजर बा ओके छोटा छोटा मैंने टुकड़ा में काट
0: लें चाहे लंबा लंबा थोड़े पतला पतला लंबा लंबा काट लें फिर छोटा छोटा टुकड़ा में काट लें
1: अच्छा
0: अब मैं नमक और सब लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिलाई के ढक के रख दें
1: कहाँ रखें धूप में
0: हाँ एक आध 3 से 4 दिन तक धूप में रखें
1: अच्छा ताकि उनमें खूब अच्छी मैंने धूप लग जाए हाँ, थोड़ा जैसे जितना बाटे उससे थोड़ा सा
0: कम
1: हो जाए हाँ हाँ धूप लगे से हाँ,
0: और फिर एक आध दिन में जब वो धूप में रखें तो चम्मच से साफ चम्मच ले लें चलाई दें
1: हाँ हाँ
0: बढ़िया से और जब पानी खट्टा और हल्का तीखा स्वाद में हो जाए
1: हाँ,
0: तो ये जाने की कांजी तैयार हो गई बाटे हाँ, अब एक पिए के लिए ठंडा कई के पिए मटकम रही तो ऐसा जब धूप से हटी तो मटकम अंदर आई और मटकम ऐसा ठंडा करा
1: हाँ, जिसे हम धूप में रखे जब धूप में से हम जब छाए में ले आए
0: हाँ,
1: ले
0: तो 2-4 घंटा बाद हाँ 2-4 घंटा ठंडा हो ही जाए गिलास में निकाल के बढ़िया से पिए और जन गाजर और चुकंदर का टुकड़ा छोटा छोटा
1: कभी
0: खा सकते हैं साथ ही और देखा एक पिए से कितना फायदा भी होता
1: है
0: पाचन शक्ति मजबूत होता है और शरीर के जो गंदगी होते हैं
1: बाहर हो जाए
0: वो कभी बाहर करत है
1: अच्छा अच्छा
0: और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होते हैं वो का मजबूत करत है
1: अच्छा
0: और पेट के लिए फायदेमंद होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं
1: ये तो देखो बड़ा जो पते का बात तू बता हाँ? और ये तो हम तो सोचे थे कि हम काल जोन बनाए के और 2-4 दिन बाद जब जब सीज जाए
0: हाँ।
1: तो अपने परिवार वालन के जरूर खियाओ तो तोके बताऊ वो करो
0: बिल्कुल
1: तो देखा तू हमें इतना नीक जोन बटे चुकंदर के कांजी बताऊ तो हाँ? ये बात पे चला हम तो है फिल्म रिश्ते नाते से और ये गाना सुनवावत है और गायिका है लता मंगेशकर जी
0: तला सुन लिया जाए

0: खाना के गए भाई बैरी का गाना।
1: देखा गीत गाओ नहीं चंपा, ऐसा चीज होता है कि ओमे कोनो न कोनो अर्थ जोन बा छुपा रहा
0: छुपा रहा था। हाँ। बिल्कुल
1: तो देखा
0: गीत गाओ जो चलत है तो मन कितना शांत रहा है।
1: हाँ।
0: एकदम खुश हो जाता
1: है, खुश हो जाता है। और यहो
0: बन काम देखो अगर काम करत है मन ना लागत है काम।
1: हाँ,
0: कोनो गीत गाओ नहीं लगाए दो।
1: हाँ, हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: का होता है कि काम भी हो लगा तेजी से।
1: हाँ हाँ हाँ
0: अपन मन भी एकदम खुश हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो देखा चंपा, जैसे आज हम अभी सवेरे आवा है तो तोसे कहत रहे कि चंपा बहुत ज़्यादा गर्मी
0: बहुत
1: बा,
0: है ना।
1: तो देखा हम देखा कि तू अपने जौन बा बैगे में एक छोटा सा बोतल लेके आए रहो, है ना। तो ये देखा छोटा बोतल ज़्यादा देर तक तो चले ना, है ना। काहे कि देखा आदमी यहाँ समय का बना चंपा कि आदमी खाना कम खाए,
0: लेकिन पानी ज्यादा
1: पानी
0: पिए।
1: के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में।

0: तरीका है कि शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। देखा धूप इतनी तेज होता है, हाँ? आदमी देखा इतनी धूप के कारण देखो चक्कर खाए खाए गिरता है, तो इसलिए जौन बाटे। और एक चीज और हो, बहुत बहनी हरे हैं सोचा थी ना कि हम खाना कितना बढ़िया बनाए दे, खूब तेल डाल दे, खूब मसाला
1: डाल दे, सही बात है,
0: और जौन बा हाँ खूब बढ़िया जौन बा तेल मसाला डाल के बनाओ तो खाना जौन बा खूब जायकेदार बने। लेकिन देखा जायकेदार बनावे के चक्कर में
1: गर्मी में तेल मसाला जितने कम खाए उतने फायदेमंद, ज्यादातर क्या करे हरी सब्जी खाए,
0: हरी सब्जी। अब देखा यहाँ समय अपने सबके खेती क्यारी में भी और बाजार में भी देखा कितना, जैसे तरबूज आई गया बाटे, खरबूजा, खीरा ककड़ी, है ना, बेल आई गया बा, आम आई गया बा, हर चीज आई गया बा,
1: हर फल आई गया,
0: हर चीज आई गया। अब देखा जैसे तरबूजा खा तो देखा उसे पेट भी भरा था,
1: पानी के जो कमी होता वो पूरा
0: पूरा हो जाता। देखा ये नहीं बाटे कि हाँ 200-400 रुपया वाला किलो फल तू खा, ऐसा नहीं बा कि नहीं
1: सस्ते में अच्छा खा सके,
0: सेब खा ले हम ये चीज खाए, नहीं, तू जौन मौसमी चीज हो, मौसमी चीज हो ऊपर जरूर ध्यान दे। जैसे यहाँ समय खरबूजा बा, अपने सबके देखा खेती की यारी में कितना भाव होते हैं, तो ओके अपन खाए ले, खीरा ककड़ी खाए ले, और देखा बेल आ गया बा,
1: बेल के तो शरबत,
0: बेल का शरबत भाई देखा पेट के लिए तो अमृत होता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो इसलिए जौन बा बहनी हरन के ये जौन जैसे सिकंजी, अभी देखा तू कतो से बाहर से जा है, और तो है जौन बा नींबू चीनी वाला सिकंजी मिल जाता है, तो जौने जौने रास्ता से जात है चंपा, तो ऐसे लगा था इतना
1: ठंडा हो गया,
0: हाँ तो पूरी शरीर जौन बा एकदम जौन बा एकदम ठंडी हो जाते, इतना अच्छा लगा था। तो यह बहनी घर से कहा चाहब कि देखा जब भी घर से निकले
1: तो एक बोतल पानी,
0: एक बोतल पानी लेके निकले, कपार
1: बांध
0: के निकले, छाता लेके निकले, और अपने संगे पानी जरूर रखें,
1: बिल्कुल,
0: हाँ जब पानी रखी है ना देखा तो भाई
1: अब पानी बोतल चाहे बढ़िया से कपड़ा में कपड़ा में लपेट के रखे तो ठंडा पानी बनल रही पानी,
0: बिल्कुल। तो चला देखा जौन बातचीत हमारे होते रहे, तो चला ये संदेश सुन लिया जाए,
1: चला सुन लिया जाए।
0: पनघट जहाँ बातन में होता है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: panghatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME@gmail.com, panghatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
3: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कोनी बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
5: बेसब्री से इंतजार रही।
0: हाँ चंपा, हाँ, हमें सबके बहनी हरन के खत का ईमेल का इंतजार रहे,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन देखा घरे तो जाए के बेला होता है, लेकिन
1: हिम्मत ना ही
0: हिम्मत
1: ना
0: ही हिम्मत ना ही पड़ा था आवा में सवेरे, तो हम सब बड़े भुरहरे में चल दे गए घरे से कि चला जौन बा जैसे जल्दी चले जावे तो घाम न लगे,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यहाँ समय तो बड़ा तेज घाम बा, लेकिन देखा
1: बिना जाए घरे चले ना,
0: हाँ चले ना,
1: घर द्वार छोड़ के लड़का का दिल छोड़ के आओ, बिना जाए चले
0: चले ना, तो चलो बहनी हरन से विदा लेने जाए। राम राम बहनी हरन,
1: राम राम बहनी हरन।

0: and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधान

0: IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझा

0: साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थलीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से

0: उन्होंने पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय

0: राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ संदेशों के बाद आप सुनेंगे लोकगीत का कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: लोकगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं उदय राज सिंह और साथियों का गाया देवी गीत।

3 बज रहे हैं, ये सभा संपन्न होती है। अगली सभा 5 बजे आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। इस दौरान 3 बजे से लेकर 5 बजे तक FM 100.3 MHz पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रसारण सुने जा सकते हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में ठीक 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत। आज के कलाकार हैं छेदीलाल और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देवी गीत।

0: आप सुन रहे थे छेदी लाल और साथियों के स्वर में देवी गीत। आइए अब सुनते हैं खेमटा, कलाकार छेदी लाल और साथी।
1: तो होता के

0: आप सुन रहे थे लाचारी छेदीलाल और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम धरती के गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में योजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

बड़ी सुरक्षा का कवच है उसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंबुश पांडे। दोस्तों, आज की ये सुहानी शाम मैं लेकर आया हूं एक ऐसा विषय जो हर उम्र, हर वर्ग और हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, योग से स्वास्थ्य और सुरक्षा। और साथ ही बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण दिन की, वर्ल्ड फेयर प्ले डे, यानी निष्पक्षता और खेल भावना का उत्सव। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं जहां तन भी स्वस्थ होगा और मन भी संतुलित, और साथ ही जीवन में ईमानदारी और निष्पक्षता की रोशनी भी फैलेगी। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। तनाव, अनियमित खान पान और भाग दौड़ भरी जिंदगी ने हमें कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। लेकिन एक ऐसा उपाय जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, वो है योग। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। योग हमें सिखाता

बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण दिन की, वर्ल्ड फेयर प्ले डे, यानी निष्पक्षता और खेल भावना का उत्सव। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां तन भी स्वस्थ होगा और मन भी संतुलित, और साथ ही जीवन में ईमानदारी और निष्पक्षता की रोशनी भी फैलेगी। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। तनाव, अनियमित खान पान और भाग दौड़ भरी जिंदगी ने हमें कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। लेकिन एक ऐसा उपाय जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, वो है योग। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। योग हमें सिखाता है सही तरीके से सांस लेना, शरीर को लचीला बनाना, मन को शांत रखना। और आज पूरी दुनिया ने योग की ताकत को स्वीकार किया है, और यही कारण है कि हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा में योग की भूमिका की बात करें तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है। योग से शरीर की इम्यूनिटी जो होती है वो मजबूत होती है, और जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। मानसिक तनाव कम करता है ये। प्राणायाम और ध्यान से मन शांत होता है, चिंता और अवसाद कम होता है, हृदय स्वास्थ्य बेहतर करता है, और नियमित योग से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, डायबिटीज और मोटापा नियंत्रित रहता है, और योगासन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। कुछ आसन, योगासन की बात करें तो ताड़ासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इन आसनों को रोज करने से आप खुद फर्क महसूस करेंगे। और योग वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम जैसे यूथ के लिए भी, क्योंकि जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपना कैसे ध्यान लगाएं, अपना कंसंट्रेशन कैसे मजबूत करें, तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे कारगर जो उपाय है वो है योग। अगर हम नियमित तरीके से योग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक ध्यान की ओर, कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर अपना पूर्ण जो है एक अपना 100% वहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं हमारे कार्यक्रम का ये पहला गीत।

तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है, यानी फेयर प्ले, निष्पक्षता। दोस्तों वर्ल्ड फेयर

प्ले डे आज के ही दिन यानी 19 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड फेयर प्ले डे हमें सिखाता है कि जीत से ज़्यादा ज़रूरी है ईमानदारी और खेल भावना। फेयर प्ले का मतलब क्या है अगर इसकी बात करें तो इसमें नियमों का पालन करना, विरोधी का जो है सम्मान करना, जीत में विनम्र और हार में धैर्यवान रहना, यह सिर्फ खेल का नियम नहीं बल्कि जीवन का सिद्धांत है। जीवन में फेयर प्ले का महत्व अगर हम देखें तो इसमें सबसे जो अहम है वो है विश्वास इससे बनता है, या हमारा जो विश्वास है ये हमारा विश्वास बनाता है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं, और दूसरा हमारा जो संबंध है वो मजबूत करता है। निष्पक्षता से रिश्तों में पारदर्शिता आती है और व्यक्तित्व को ये निखारता भी है। तो दोस्तों आज से ही संकल्प लें कि हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे और ईमानदारी से जीवन भी जिएंगे। और अगर हम अगर बात करें कि योग और फेयर प्ले का आपस में क्या संबंध है, तो योग हमें सिखाता है कि हमें जो है आत्मनियंत्रण कैसे रखना है, धैर्य संतुलन कैसे बना के रखना है, और जो फेयर प्ले है ये हमें सिखाता है कि ईमानदारी सम्मान अनुशासन, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा इंसान बनता है जो ना सिर्फ स्वस्थ होता है बल्कि एक अच्छा नागरिक भी बनता है। जीवन में अपनाने के उपाय अगर देखें तो अगर इन्हें हमें अपनाना है, अपने जीवन में इन्हें सम्मिलित करना है, तो इसके लिए हमें रोज़ 20 मिनट जो है योग पर अपना ध्यान योग करने के लिए अपना समय देना होगा, और हर काम ईमानदारी से करें ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें और दूसरों का सम्मान करें, हार जीत को समान भाव से स्वीकार करें। और अगर ये हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फेयर प्ले वाली जो बात है वो जाके सही सिद्ध होती है, क्योंकि जीवन एक खेल है और हम सभी खिलाड़ी हैं। योग हमें फिट रखता है और फेयर प्ले हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है। इसलिए हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे और पूरी ईमानदारी से जीवन जिएंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सच्चा चरित्र यही असली सफलता है। तो दोस्तों ये थी बातें आज की चर्चा की, जहाँ पे हमने बात की कि हमें वर्ल्ड फेयर प्ले डे को कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, कैसे इसे हम अपना कर अपने जीवन में अपने आप के चरित्र को अच्छा कर सकते हैं, और लोगों के बीच अपनी जो एक पर्सनालिटी है उसको कैसे अच्छे रूप में ला सकते हैं, और दूसरा ये कि योग हमारे लिए जितने भी लोग हैं सभी के लिए, खासकर यूथ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के इस तनाव भरी ज़िंदगी में, क्योंकि जहाँ भी स्ट्रेस होता है अगर हम योग का सहारा लेते हैं तो हम अपने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अपने गोल पर अपने टारगेट पर फोकस कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: तो दोस्तों, हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता, जिसका विषय है युवाओं के लिए क्यों जरूरी है योग। वार्ताकार हैं आकांक्षा अग्रवाल, तो आइए सुनते हैं।
5: युवाओं के लिए क्यों जरूरी है योग। आज के बदलते दौर में युवा पीढ़ी अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। शारीरिक तनाव, मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का प्रभाव, अनुशासन की कमी और जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं। ऐसी स्थिति में योग ना केवल शरीर को

स्वस्थ रखने का माध्यम है, बल्कि मानसिक संतुलन, आत्मनियंत्रण और अनुशासित जीवन की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है। योग, जो कि भारत की प्राचीन और वैज्ञानिक परंपरा है, आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता प्राप्त कर चुका है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी युवा वर्ग को सशक्त बनाता है। आइए जानते हैं योग की परिभाषा और उसका महत्व। योग शब्द संस्कृत धातु युज से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक समग्र जीवन पद्धति है, जो व्यक्ति के विचार, व्यवहार, आहार और आचरण को संतुलित करता है। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाना है। युवाओं के लिए क्यों आवश्यक है योग? पहला, तनाव और अवसाद से राहत। युवा अक्सर पढ़ाई, कैरियर और संबंधों को लेकर तनाव में रहते हैं। योगासन, प्राणायाम और ध्यान तकनीकें तनाव हार्मोन, जो कि कॉर्टिसोल, को कम कर मानसिक स्थिति को स्थिर बनाती है। योग फोकस और एकाग्रता में वृद्धि करता है। नियमित योग से मस्तिष्क की एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। यह परीक्षा की तैयारी, अनुसंधान, प्रतियोगिता और पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायक होता है। नशे और अनुशासनहीन जीवन शैली से बचाओ। योग युवाओं को आत्मनियंत्रण सिखाता है और उन्हें अनुशासित दिनचर्या अपनाने हेतु प्रेरित करता है, जिससे वे धूम्रपान, नशा और मोबाइल पर अत्यधिक निर्भरता जैसी बुराइयों से दूर रह सकते हैं। योग आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। योग मानसिक ऊर्जा और आत्मबल को बढ़ाता है। युवाओं में आत्मविश्वास की कमी, हीन भावना या सामाजिक असुरक्षा की भावना को योग दूर करता है। शारीरिक फिटनेस और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी योग बढ़ाता है। युवावस्था में स्वस्थ शरीर निर्माण की नींव पड़ती है। योग से मांसपेशियां लचीली बनती हैं, वजन नियंत्रित रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। योग के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य आज के युग में एक गंभीर चिंता का विषय है। युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल बर्नआउट जैसी समस्याएं आम हो चुकी है। योग कुछ इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। प्राणायाम, गहरी सांस लेने की प्रक्रिया, मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचाकर उसे शांत करती है। ध्यान यानी मेडिटेशन, यह मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित कर तनाव व नकारात्मक सोच को नियंत्रित करती है। योग निद्रा, जिसको योगिक स्लीप भी बोला जाता है, यह विश्राम तकनीक मानसिक थकावट को कम करती है और गहन मानसिक शांति प्रदान करती है। योगासन के कुछ प्रमुख लाभ भी हैं, जैसे कि ताड़ासन शरीर में संतुलन बढ़ाता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। वज्रासन पाचन शक्ति को सुधारता है, विशेष रूप से खाने के बाद। भुजंगासन मेरुदंड को लचीलापन देता है और पीठ के दर्द को राहत देता है। शीर्षासन मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, जिससे स्मृति और ध्यान शक्ति में वृद्धि होती है। पश्चिमी मोत्तासनासन पेट की चर्बी घटाता है और मन को शांत करता है। प्रमुख योग के प्रकार जो युवा अपना सकते हैं। पहला है हठ योग, शारीरिक स्वास्थ्य और आसनों पर आधारित योग पद्धति। दूसरा, राज योग, आत्मनियंत्रण और ध्यान पर आधारित मानसिक संतुलन हेतु लाभकारी होता है। अष्टांग योग, पतंजलि द्वारा वर्णित 8 अंगों का योग, जो जीवन की संपूर्णता की ओर ले जाता है। चौथा है पावर योग, उच्च गतिशीलता और ऊर्जा के साथ किया जाने वाला योग विशेषकर युवाओं को पसंद आता है। कुछ योग जैसे योग नृत्य, जिसको डांस योग भी बोला जाता है, युवा वर्ग के लिए अधिक आकर्षक और मनोरंजक शैली है। आइए जानते हैं कि दिनचर्या में योग को शामिल करने के फायदे क्या होते हैं। दिन की शुरुआत में योग करने से मन शांत, शरीर ऊर्जावान और विचार सकारात्मक रहते हैं। शारीरिक लचीलापन और संतुलन बढ़ता है, जिससे दुर्घटनाओं और मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना कम हो जाती है। नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन कम होता है। योग पाचन तंत्र मजबूत

0: मजबूत करता है और वजन संतुलित रहता है। पढ़ाई और रचनात्मकता में भी सुधार होता है क्योंकि योग ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता को बढ़ाता है। कुछ सरकारी प्रयास और वैश्विक स्तर पर योग की महानता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता देना भारत की सांस्कृतिक और स्वास्थ्य परंपरा की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट और योगा फॉर वेलनेस जैसे अभियान युवाओं को योग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा निष्कर्ष यह है कि आज के युग में जहां युवा पीढ़ी जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए संघर्षरत है, वहां योग उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रखने का एक सहज और वैज्ञानिक उपाय प्रदान करता है। यह केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन का शिल्प है। युवा जितनी जल्दी इसे अपनाएंगे, उतना ही वे अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़, अनुशासित और सकारात्मक बना सकेंगे। योग न केवल वर्तमान को सुधारता है, बल्कि भविष्य को भी स्वस्थ और संतुलित दिशा में ले जाता है। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी वार्ता, वार्ताकार थी आकांक्षा अग्रवाल। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि प्रेरणापुंज की। दोस्तों, ज्ञान वो दीप है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन को प्रकाशमय करता है। और दोस्तों, आज का जो हमारा प्रेरणापुंज है वो समर्पित है हिंदी साहित्य के उस महान आचार्य को जिनका नाम लेते ही विद्वता, संवेदनशीलता और गहन चिंतन की छवि हमारे सामने उभर आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव दुबे का छपरा में हुआ था। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विद्वान थे और यही कारण था कि बचपन से ही घर का वातावरण ज्ञान और विद्या से भरा हुआ था। द्विवेदी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में प्राप्त की। वे ज्योतिष और शास्त्रों के गहरे ज्ञाता बने, लेकिन उनका मन केवल परंपरा तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने आधुनिकता को भी उतनी ही गहराई से अपनाया। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो पूरी दिशा बदल देते हैं। द्विवेदी जी के जीवन में ऐसा ही एक पड़ाव आया जब वे शांति निकेतन पहुंचे। ये वही स्थान है जिसे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। शांति निकेतन में रहते हुए द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और साहित्य को नए दृष्टिकोण से समझा। यहाँ उन्होंने न केवल पढ़ाया बल्कि अपने लेखन को भी एक नई ऊंचाई दी। उनकी सोच में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है और यही उन्हें अन्य लेखकों से अलग बनाता है। अगर वहीं हम बात करते हैं साहित्यिक योगदान की, तो शब्दों के शिल्पकार रहे हैं द्विवेदी जी। द्विवेदी जी का जो लेखन है वे विचारों के शिल्पकार थे। उनकी प्रमुख कृतियां अगर हम देखें तो वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कबीर, अनामदास का पोथा, और इन रचनाओं में उन्होंने इतिहास, दर्शन और साहित्य को इस तरह जोड़ा कि पाठक न केवल पढ़ता बल्कि सोचने पर भी वो मजबूर हो जाता है। उनके लेखनी में गहराई भी है और सरलता भी है जो हर वर्ग के पाठक को आकर्षित करती है। श्रोताओं, अगर द्विवेदी जी के सबसे महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो वो है संत साहित्य की उनकी व्याख्या। उनकी पुस्तक कबीर ने संत कबीर को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कबीर को केवल एक संत या कवि के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी व्याख्या ने भक्ति आंदोलन को एक नई पहचान दी जहां धर्म के साथ साथ समाज सुधार की भावना भी जुड़ी हुई थी। द्विवेदी जी के उपन्यासों की बात करें तो उनकी सबसे खास बात ये रही है कि उनमें इतिहास और कल्पना का सुंदर मेल मिलता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में उन्होंने प्राचीन भारत के जीवन को इतने जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया कि पाठक खुद को उसी युग में महसूस करता है। और वहीं अनामदास का पोथा में आध्यात्मिकता और जीवन के रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। अगर सम्मान और उपलब्धियों की बात करें तो इतना महान योगदान हो और सम्मान न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें प्रमुख है पद्म भूषण जो कि उन्हें 1957 में मिलता है। इसके अलावा वे कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और आचार्य के रूप में कार्यरत रहे। उनका योगदान केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और समाज को भी गहरा

गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, किसी भी महान व्यक्ति की पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं होती बल्कि उसके व्यक्तित्व से भी होती है। द्विवेदी जी बेहद ही सरल, विनम्र, सहज व्यक्ति के थे। उनके भीतर ज्ञान का अथाह भंडार था, लेकिन उसमें अहंकार की कोई जगह नहीं थी। वे हमेशा नई पीढ़ी को प्रेरित करते थे कि वे अपने जड़ों से जुड़े रहें और साथ ही आधुनिक सोच को भी अपनाएं। तो ये बात थी, ये कुछ बातें थी हमारे आज के प्रेरणापुंज, जो कि थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हम हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, कैरियर की बात अगर हम करें तो आज के कैरियर की बात में हम जानेंगे कि रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट जो 2026 का जो फॉर्म है वो फिल किया जा रहा है, जिसकी फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग जो डेट थी वो थी 15 मई और इसकी लास्ट डेट है वो 14 जून है। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म इस समय फिल करना आज से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 19 मई 2026 और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 8 जून 2026। उसके बाद अगर देखें तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे फॉर्म फिल करने की जो आखिरी जो डेट है वो आज है, मतलब उसका आज आज लास्ट डेट है इसे फिल करने की। अगर आपने नहीं फिल किया है तो आप आज ही इसे फिल कर सकते हैं जाकर। और इसी कड़ी में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका जो भी सही उत्तर होता है हम अगले दिन के कार्यक्रम में आपके साथ साझा करते हैं। और इसी कड़ी में जो हमारा कल का प्रश्न था वो ये था कि चंद्रमा पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी। तो इसका सही उत्तर है कि चंद्रमा पर सबसे पहले पानी के अणु की जो खोज है वो भारत ने की थी। भारत ने साल 2008 में अपने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट के जरिए चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का जो है पता लगाया था। और इसी के साथ जो हमारा आज का प्रश्न है वो ये है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना जो शहर है वो कौन था। इसका जो सही उत्तर है, जैसा आप इसके सही उत्तर को हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि yuvvnielde@gmail.com है, वहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि है 8004926250। और चलते चलते हम सुनवाते हैं हमारे कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा है आप हमें रिव्यू कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी में, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि है 8004926250। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले दिन के कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे यानी अंबुज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टर आईटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक

0: बंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: बीडीवी 92.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 6:05 हो चुके हैं। अब आपको जानकारी देते हैं आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। तो पहले आपको बताते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनवाएंगे डॉक्टर विंध्यवासिनी त्रिपाठी की वार्ता यत्नम बिना रत्नम न लभ्यते। कीर्ति चौधरी के स्वर में भजन और गीत सुनिएगा 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8 बजे और सबर सुनवाएंगे 8:30 पर।

हमारे गजल प्रेमी श्रोताओं के लिए 9:30 पर पेश करेंगे कहकशा कार्यक्रम। खेल दर्पण कार्यक्रम होगा 10 बजे, जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन।

एक कार्यक्रमों की। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम। ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे लाल राजेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत, कृषि यंत्रों के रखरखाव में ध्यान देने योग्य बातें। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर विष्णु बलि मिश्र की वार्ता, मानसिक तनाव एवं अवसाद का आयुर्वेदिक उपचार। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ होगा 7:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर सुनवाएंगे पंडित प्रेम कुमार मलिक का ध्रुपद गायन। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर सुबह, जिसमें आप सुनते हैं कुछ बातें, आपके संदेश और प्यारे प्यारे नगमे। सुगम संगीत में सुबह 9:50 पर सुनवाएंगे पामेला नंदी के स्वर में भजन और गीत, वॉइस ऑफ प्रयागराज। ये कार्यक्रम होगा 10:05 पर। कल का विषय होगा सोशल मीडिया पर सेल्फ इमेज और रियलिटी का अंतर। आपके फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचाएंगे हेलो फरमाइश के साथ, दिन में 12:30 पर।

महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दिन में 1:15 पर होगा। बहनें सुनेंगी मेरा हुनर मेरा व्यवसाय के अंतर्गत मसाले बनाने के व्यवसाय के बारे में और सेहत ज्ञान में बात होगी प्रोटीन युक्त हो नाश्ता इस विषय पर। लोकगीतों का कार्यक्रम 2:30 पर होगा। कलाकार होंगे भरत लाल और साथी, नीलम शर्मा और राम प्रसाद और साथी। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर होगा। युवजन सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत पर केंद्रित प्रेरणा पुंज। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे नीति वचन और राम प्रसाद और साथियों के स्वर में लोकगीत। बोलते नगमे हमारा ये विशेष कार्यक्रम होगा कल शाम 7:31 पर। स्वर होंगे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर की। और सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है खोई हुई व्यक्ति के संबंध में सूचना। श्याम बिहारी जो ग्राम बिजवनिया और या थाना उतराव प्रयागराज के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि उतनी पत्नी ललिता उर्फ आजी उपनाम आरती 8 मार्च 2026 को ग्राम बिजवनिया थाना उतराव प्रयागराज से खो गई है। इनकी उम्र 35 वर्ष है। शरीर की बनावट दोहरा शरीर है, चेहरा गोल है, आंखें काली हैं। इनकी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच है, रंग गोरा है, दाहिने गाल पर काला निशान है। इन्होंने काले रंग की साड़ी पहन रखी है और इनके बाल मीडियम काले हैं। इनको बाजार या अन्य स्थानों पर खोजा गया है पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया बिजवनिया थाना उतराव प्रयागराज में सूचित करने का कष्ट करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार नंदलाल प्रजापति जो गोबर सहाय मंझनपुर के रहने वाले हैं सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री स्वाति प्रजापति जो गोबर सहाय मंझनपुर जनपद कौशाम्बी की रहने वाली हैं 5 अप्रैल 2026 को रात 10:30 से खो गई हैं। इनकी उम्र 15 वर्ष है। शरीर की बनावट एक गहरा बदन है, चेहरा गोल है, आंखें काली हैं। इनकी ऊंचाई 4 फुट 6 इंच है, रंग गोरा है। इनके बाल काले और लंबे हैं। इन्होंने सलवार सूट हरे रंग का, गले में काला धागा पहन रखा है, हाथ में लाल धागा पहन रखा है, नाक में नथनी और हवाई चप्पल पहन रखी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 9621381805। फ़ोन नंबर एक बार फिर बता दें 9621381805। कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में 6:20 हुए हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्तलेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानां असाध्य रोगिणां अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट शुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमति प्रदत्ता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम् अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्येतेषां समकक्षिभिः सह अस्मिन् शिखर सम्मेलने भागं स्वीकृतम्। 2022 वर्षे डेनमार्क देशस्य कोपेनहेगन नगरे आयोजितस्य पूर्व शिखर सम्मेलनानन्तरं भारत नॉर्डिक देशानां मध्ये क्षेत्रीय सहकारं सुदृढीकरणम् अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यमस्ति। तन्त्रज्ञानं, नवान्वेषणं च, सुस्थिरता, पुनर्नवीकरणीयोर्जा, डिजिटलीकरणं च अस्य सम्मेलनस्य प्रमुखानि क्षेत्राणि सन्ति। व्यापार आर्थिक सहभागित्व सन्धिना TEPA इत्यनेन सह अधुना प्रवृत्तेन शिखर सम्मेलनस्य भारत नॉर्डिक क्षेत्राणां मध्ये व्यापार निवेश संबंधाः अपि सुदृढाः भविष्यन्ति इति अपेक्षा अस्ति। नॉर्डिक समूहेन सह भारतस्य द्वैपाक्षिक व्यापारः सम्प्रति प्रायः 21 बिलियन

0: भारतस्य कृते व्यापार प्रतिक्रियां सुदृढं कर्तुं द्रुततर परिष्कारान् स्वीकर्तुं महत्तर स्थितिस्थापकायाः निर्माणं कर्तुं आपूर्तिशृङ्खलाः सुदृढां कर्तुं च अवसरत्वेन द्रष्टव्यम्। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनपिङ्ग वर्येण सह मेलनं करिष्यति। क्रेमलिन इत्यस्यानुसारं उभौ नेतारौ आर्थिक सहयोगस्य विषये प्रमुखेषु प्रादेशिक वैश्विक विषयेषु च चर्चां करिष्यतः। एषा यात्रा चीन रूस मैत्रीसन्धेः 25 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये आचर्यते। एषा वार्ता तदा अभवत् यदा वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षस्य मध्ये चीनदेशः अमेरिकादेशेन रूसदेशेन च सह स्वस्य सम्बन्धान् सन्तोलयति। युक्रेन द्वन्द्वस्य विषये पाश्चात्य प्रतिबन्धानाम् अनन्तरम् अपि चीनदेशः रूसदेशस्य बृहत्तमः वाणिज्यिक सहभागी रूसदेशस्य तैल प्राकृतिकेन्धनस्य प्रमुखः क्रेता चास्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायां प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धा याम संति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रे सुसहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: काहो राधा बहनी, खेती किसानी के का हाल समाचार रहे हो?
1: भैया। खेती किसानी तो अपन सब एके रोज के काम बाटे चलते
0: हाँ
1: रहे थे, लेकिन ये समय तो देखा दो राजा कितना तेज काम कर रहे हैं।
0: ये तो एकदम सही कहू हो। जौन धूप पड़त है यह वक्त 48 डिग्री सेल्सियस तो भैया तापमान है हो। तो भैया किसान भैया बहनी हरन के ये जरूर चाहे कि भैया घरे से अगर निकलत हैं तो भैया कनम से 10 बजे के पहले अपन कुल काम कर लें, और जब भी निकले भैया तो 4 बजे के बाद निकले हों।
1: देखा बच बचाए कि अपन सभी के काम करें, नहीं तो बीमारी आजादी के डर लागत है, लू लाग जाए। और सिर्फ अपने के नहीं, अपने जितने लड़कन गदेलन हो सबके बचाए के जरूरत बाटे। और सरकारों कहा था कि इस समय जितना हो सके घरे में रहें, बहुत जरूरी काम हो तबे बाहर निकले, नहीं तो सवेरे संध्या अपने खेती किसानी के काम करें। ए हो रानू भैया,
0: हाँ,
1: का चलत है तुरे खेती में?
0: देखा ये वक्त तो भैया काम से अपने खेते में तो भैया देखा सब्जी बो रहा है। नेनुआ है, तरो यह है भैया, लौकी यह है, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, हिरमाना है। किसान भैया बहनी है रे ये भैया बोए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहनी देखा एके तो तोरी आता है भैया सांचे के, लेकिन कहा है कि किसान भैया बहनी है रे एके जब मंडी ले जाता हैं तो भैया सब रहे ले जाता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है बहनी, लौटत लौटत हो जाता है देर। तो ऐसे ही है कि भैया काम से जौन धूप है वो बढ़ जाता है। तो हम तो एक अरदास लगाए किसान भैया बहनी हरन से कि भैया जब

0: जाए तो गमछा लेके जाए।
1: साथे सत्तू बांधे, पानी बांधे, जैसे कि कहूं भी लागे कि अगर थोड़ी भी तबीयत उनके खराब होए लागे तो
0: हाँ
1: पानी का सेवन करें,
0: हाँ
1: सत्तू के सेवन करें और
0: हाँ
1: जितना हो सके ठंडा में छांव में रहें।
0: एकदम सही कहो। देखा सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर भैया देखा पेट भरा रहे था तो भैया लू कम लगे था।
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भैया बहनी है इनका पानी के जो उन्हें है भैया अपने साथे लेके चलें। और अगर कहीं भी उन्हें लगत है कि भैया अगर हमें तबीयत में कुछ कमी है तो भैया रुक के डॉक्टर के तुरंत दिखाएं भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा, समझदारी ही सबसे ज्यादा बचाव के राहत है।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन भैया देखा, अपने पंचायती में
0: हाँ
1: समय
0: हाँ
1: समय पे हम लोग ऐसे जागरूकता के लिए और अपन किसान भैया के विकास के लिए चर्चा कर रहे थे,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आज हम चर्चा करें चाहे सहकारी समिति के।
0: एकदम सही कहो हो राधा बहनी। एक बात और है
1: हाँ
0: देखा ये जो सहकारी समिति है ये एक स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक संगठन होता
1: हाँ
0: हो।
1: हाँ काहे नहीं भैया,
0: हाँ
1: काहे से कि एक तो नाम के मतलब ही आए कि मिलकर कार्य करे।
0: हाँ तो एमन ये है कि जौन से का होता कि समान आर्थिक और सामाजिक हित का जौन फैसला है
1: हाँ।
0: सब मिल के एक साथ ले लें। और एकर जौन सबसे बड़ा उद्देश्य है हो राधा
1: हाँ
0: बहनी
1: हाँ हाँ
0: कि एकर उद्देश्य ये है कि जौन किसान भैया बहनी हरिन के या आम जन मानस के शोषण होते बिचौलियन के द्वारा
1: हाँ
0: उसे ऐसे बचा जा सकत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखा, लाभ कमाए के उद्देश्य नहीं बाटे।
0: हाँ हाँ हाँ
1: ई जौन भी समिति छोटे समूह में छोटी छोटी संस्था बनत हैं,
0: हाँ
1: उनकर एक ही उद्देश्य होते हैं कि आपन संस्था के जितने भी सदस्य हैं
0: हाँ हाँ हाँ
1: सहायता करके उनके हित की रक्षा करें।
0: हाँ हाँ
1: और भैया, जब किसान भैया लोगों की बात होते ना, तो एक सहकारी समिति बड़ा ही योगदान देते,
0: हाँ
1: केमा
0: हाँ
1: देते, जैसे कि किसान भैया हैं, पशुपालक भैया हैं, व्यापारी हैं, श्रमिक भैया लोग हैं, इन सभी के लाभ पहुंचावत हैं। जैसे ऋण में है, बीज खाद कैसे सुलभता से हमार संस्था के सदस्यों तक पहुंच जाए। जैसे आप कहें ना कि बिचौलिया की जरूरत नहीं रहत है,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ई सहकारी समिति ऐसे सहायता करत है, मदद करत है हमार उन सदस्यन के कि कौनों भी बिचौलिया उनके जो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके।
0: अच्छा एक बात और है राधा बहनी देखे सहकारी समिति के जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि आदमी स्वैच्छिक सदस्यता भी ले सकत है। एमन कहा है कि व्यक्ति जौन है न एमन जाति न धर्म न लिंग कौनो भेदभावना है।
1: कितना बढ़िया बात बाटे।
0: आदमी जब चाहे स्वेच्छा से जुड़ सकत है और जब चाहे ओके छोड़ सकत है।
1: और भैया,
0: हाँ
1: अगर जौन भी हमार पंच भैया ने सुनत हो,
0: हाँ
1: उनका हम बताए चाहे कि चाहे हमारे कृषि सहकारी समिति हो,
0: हाँ हाँ
1: उपभोक्ता सहकारी समिति,
0: हाँ
1: दुग्ध सहकारी समिति,
0: हाँ
1: आवास सहकारी समिति,
0: हाँ
1: श्रमिक सहकारी समिति, और जितनी तरह की समिति हैं,
0: हाँ हाँ
1: ये सब भैया आपन लोगन के बड़े हैं। सब एकजुट हो करके एक समिति के निर्माण करते हैं,
0: हाँ
1: संस्था के निर्माण करते हैं। तो
0: हाँ
1: आपो लोग, अगर आपके आसपास ऐसी समिति ना बनी हो,
0: हाँ
1: तो मिलजुल कर ऐसी सहकारी समिति, ऐसी संस्था के निर्माण आपस में करें। पहले भी भैया, हमका याद है अपने गांव देहात के बातें में,
0: हाँ हाँ हाँ
1: कि जब हमारे सभी के यहाँ कोनो छोट भी कार्यक्रम पड़त रहा ना,
0: हाँ हाँ हाँ
1: चाहे कौनों के जन्मदिन होए, गौना होए, विदाई होए, बियाह होए,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो मिलजुल कर जेकरे हियाँ दूध दही होत है, ओकरे
0: हाँ
1: हियाँ सेवा हो जाता है, जेकरे हियाँ अनाज है, जेकरे हियाँ फल सब्जी। कहे का मतलब ये है कि मिलजुल करके सबके सब काम हो जात रहा।
0: एकदम देखे राधा बहिनी जौन बात कहूँ ना एकर जौन मुख्य उद्देश्य है वो खाली लाभ कमावे के ना है। एकर उद्देश्य है कि सदस्यों के साझा जौन जरूरत है
1: यही
0: वो
1: तो
0: का
1: बात
0: पूरा
1: है।
0: करिए। हाँ
1: देखा भैया, देखो, आर्थिक विकास जो है
0: हाँ हाँ
1: कौनो भी तब हो सकत है जब हम सब मिलकर काम करी, एक
0: हाँ
1: दूसरे के मदद कर के काम करी।
0: हाँ
1: और जितने भी हमारे छोट किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका सहारा बनत है इस सहकारी समिति।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तब भैया
0: हाँ
1: देखा, जब तक अपने पंचायती में
0: हाँ
1: ढोल नगाड़ा ना बाजे ना, तब
0: हाँ
1: तक कुछ नीक नहीं
0: एकदम सही
1: लागत
0: कहो हो राधा बहनी। देखा का नाम से बाबूलाल दिवाकर भैया हरे का नाम से एक विकास गीत है उनकर।
1: है। हाँ
0: हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरन का सुनवाई दिया
1: बिल्कुल
0: जाए।
1: बिल्कुल भैया, सुनवाए दे।

0: घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बच्चत।

0: छत और पेड़ों की सुरक्षा।
1: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें। प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
1: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें। प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: हाँ, देखा हो राधा बहनी?
5: हाँ हाँ।
4: एक बाबूलाल दिवाकर भैया का विकास गीत रहल हो,
5: किसान भैया संदेश सुन लिया गा।
4: हाँ हाँ।
5: भैया, हम सभी बात करत रहे कितना गर्मी पड़त है, बचाव के रह के चाही।
4: हाँ,
5: लेकिन ये तो हम सब अपन के सभी के बात करत रहे।
4: हाँ।
5: जो अपन पशुअन है ना, गर्मी का मौसम पशुअन के लिए भी बहुत कठिन समय होते भैया।
4: एकदम सही कहो बहनी। देख, बात ये है ना।
5: हाँ।
4: कि बोल ना पहुँचन हो।
5: हाँ।
4: अपन दुख दर्द केहू से कह ना पहुँचन। तो इनकर दुख दर्द जो न है भैया, किसान भैया बहनी हरन के समझे के है और हमें सबके समझे के है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहनी, कि यह वक्त जो चलत है धूप, ये भैया देखा 48 डिग्री के साथे साथे कनम से जौन तापमान के साथे साथे हवा चलत है न, गर्म हवा चलत है। ये कहा है कि भैया, जैसे चाहे मनई हो चाहे जानवर हो भैया, जेकरे ऊपर पड़त है
5: सबके स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़त है।
4: हाँ हाँ।
5: तो ये मौसम में जोन भी हमारे पशुपालक भैया हैं,
4: हाँ हाँ हाँ।
5: बहुत खास ख्याल रखें अपन पशुओं के, हो सके इनके स्वच्छ और ठंडा स्थान पर।
4: एकदम सही कहो। देखा, अगर किसान भैया बहनी हरे अपने पशु के बानत है तो भैया मड़ई हो।
5: हाँ।
4: या तो पुरान जो घर रहे, पहले माटी के घर रहे, खपड़ा के,
5: कितना ठंडा रहा था। हाँ।
4: तो उमन बांधे और साथे साथे कर्म से जो जूट का बोरा है भैया, उके भिगा के जो है जो खिड़की है रोशनदान है वहाँ लगा दी है, तो उसे कहा है कि ठंडी हवा आए।
5: एक बात की और ध्यान दे के चाहिए रानू भैया।
4: हाँ हाँ।
5: कि देखा अपन सब के प्यास लागत है।
4: हाँ
5: तो हम सब बार बार पानी में मांगत है चाहे जाके पी लें।
4: हाँ।
5: लेकिन अपन पशु जैसे आप कहें ना कि बोलना ही पड़ते, तो कोशिश करें कि बार बार जाकर के उनके पानी की व्यवस्था करें, जैसे अपन जो भी पशुअन है।
4: हाँ।
5: उनके पानी की कमी ना हो सके।
4: एकदम सही कहें। देखें, कम से कम 3 से 4 बार पानी पियाओ और साथे साथे पानी जो रहे वो ताजा पानी रहे।
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और ताजा पानी रहे और उसके कम से खूब बढ़िया से जो बर्तन में डालत है ओके साफ कर दे। और साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखें, जौन चारा देते हैं किसान भैया बहनी हरे।
5: हाँ, हाँ, हरा चारा।
4: हरा चारा यह वक्त का है कि किसान भैया बहनी हरे हैं कि खेते में से काट के ले आए।
5: हाँ,
4: और ओके तुरंत बाल के खिया देते हैं। तो ऐसा न करें, चारा लेके आवे ओके रख दें, बल्कि एक्स्ट्रा चारा लेके आवे भैया, एक तोर रखें सवेरे ओके बालें और ओकरे बाद ओके खियावें। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखा काम से जौन समय समय पेन है नमक और मिनरल का हो कि जौन पानी यह है वहीं में थोड़े से अगर नमक डाल देते हैं तो उसे का है डिहाइड्रेशन न हो।
5: मिनरल से मतलब यह है कि जौन भी खनिज।
4: हाँ, हाँ,
5: मिश्रण है।
4: हाँ,
5: ओका उनके सूखा चारा में या जौन भी भारी खाना देते हैं तो ओमा मिलाए दें, चाहे पानी में मिलाए दें ओके। हाँ, नमक मिलाए दें और तब अपने पशुओं के मिलाए, तो जिससे उनके स्वास्थ्य जौन है बने रहे, उनका पोषक तत्वन की कमी ना हो।
4: एक बात तो रहे हो राधा बहनी। हाँ, का है कि कुछ किसान भैया बहनी हरे, अब देखा पुरान घर ना आया है तो टीने में बांध देते हैं। तो टीना में अगर बांधते हैं तो या पत्रा में बांधते हैं तो ये करें कि पत्रा के ऊपर जो पुआल है।
5: हाँ हाँ।
4: भैया अगर कम से वह खरपतवार ऊपर डाल देते हैं तो उसे ये रहे कि उन्हें कुछ आराम मिले,
5: राहत मिले। हाँ। जाए।
4: और दूसरा चीज ये है कम से कि किसान भैया बहनी हरे ये जौन ध्यान दें कि जौन भोजन उन्हें देते हैं पशु के, भैया जैसे कुछ किसान भैया बहनी हरे भैया देखा चरावे लेके जाते हैं, तो भैया वो क्या करें कि सवेरे अगर सूरज उगते ही छोड़ देते हैं तो 9 बजे तक कौनो भी परिस्थिति में अपने घर ही लेके चलावें और शाम के 5 बजे के बाद ही उन्हें चरावें।
5: देखा कितना हम सबे कहते हैं और जहाँ हमार पंच भैया हरे सुनत हुई हैं।
4: हाँ, हाँ।
5: समझत हुई हैं कि कितना जरूरी बाटे कि गर्मी में पशुअन की देखभाल।

0: कीन जाए। तो भैया पशुअन की देखभाल गर्मी में की जाए, एक विषय पर एक बातचीत बाटे।
1: हाँ
0: डॉक्टर सुबोध यादव प्रवीण बात कर रहे हैं, प्रवीण भैया, प्रवीण कुमार मिश्रा भैया की बातचीत बाटे डॉक्टर सुबोध यादव से। तो
1: हाँ
0: हम कहा तू सुनो और पंच भैया भी सुने, और के साथे साथे इनके बात के माने कि कैसे कैसे अपन पशुओं की देखभाल की जाते।
1: सुनवाएं जी। मैंने
2: किसान भाई देखा, खेती किसानी के साथे साथे पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय बाटे। हम कही बहुत से किसान भाई यहाँ जो अनाज उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करत हिन और तमाम तरह से उससे जो जुड़ा व्यवसाय बाटे उका करत हिन। तो गर्मी के मौसम में पशुपालन कैसे की जाए, अपने पशु की देखभाल कैसे की जाए, एके बिना जानकारी दे के खातिर आज अपने बीच में डॉक्टर सुबोध यादव जी हैं। आप इस विषय के जानकार हैं, आप कृषि वैज्ञानिक पशुपालन सुआर्ट्स कृषि विज्ञान के नैनी में कार्यरत हैं, आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं। हम कही डॉक्टर साहब आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले हमारे किसान भाई के बतावें कि गर्मी के मौसम में जो उन पशु हैं उनका देखभाल कैसे की जाए।
3: धन्यवाद। मैं सुबोध यादव, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र। सभी पशुपालकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आकाशवाणी प्रसार भारती के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये मौसम ऐसा है, ये मौसम आप अपने पशुओं को खूब अच्छा खिलाएं पिलाएं, मगर सबसे ज्यादा इस मौसम में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है जिससे पशुपालकों को बहुत हानि होती है। तो इससे क्या करें, पशुओं को सुबह शाम छायादार स्थान पर दोपहर को बांधें और सुबह शाम नहलाएं और दिन में 3 बार 35 से 40 लीटर ताजा स्वच्छ पानी दें। और अगर पशुपालकों को सुविधा हो तो कच्चे घर, जो कच्चे घर होते हैं मड़ैया टाइप की होती हैं, उसमें बांधें और खिड़कियों में जो जूट के बोरे आते हैं वो भिगा कर टांगें। और जब भी उन्हें नहलाएं तो खुरेरा का प्रयोग जरूर, क्योंकि इस मौसम में जुएं और किलनी का प्रकोप अधिक रहता है। अगर खुरेरा का प्रयोग करेंगे तो उससे भी आप निजात पा जाएंगे। और देखना हमेशा स्वच्छ नीम का पेड़ हो, छायादार पेड़ हो, सुबह और शाम बांधें। और इसमें एक चीज़ और है, गर्मियों में टीकाकरण सबसे महत्व होता है। ये 3 बीमारियां जैसे खुरपका, मुंहपका, गलाघोंटू और लंगड़ी बुखार, इनका टीका बरसात शुरू होने से पहले 1 महीने लगना बहुत जरूरी है। अगर ये टीका आपने लगा लिया तो 1 साल तक आपके पशु बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो ये टीका 15 मई से 15 जून तक लगता है। तो जब भी टीका लगाएं तो ये बात ध्यान रखें कि टीका सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद लगाएं, और उस दिन नहला दें उस जानवर को। और कुछ कगजा जो ठंडे पदार्थ होते हैं जैसे दाना चोकर, तो वो खिलाएं पशुओं को। और पशुओं में कगजा इस समय हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो पशुओं को दोपहर को बिल्कुल नहीं नहलाएं।
2: डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी जानकारी देहन कि जो टीकाकरण बाटे जो पशु के बाटे को दिन निकले से पहले या सूर्यास्त के बाद जो है करावे। हम कही ऐसे किसान भाई के का फायदा बा, साथे साथे एक बात यह बतावे कि गर्मी में जो खास करके जो दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन की जात बाटे, दूध का जो उत्पादन बा वो बराबर रहे तो एके बिना किसान भाई का उपाय।
3: इसके लिए सबसे पहले हरे चारे की पूर्ति करनी है। आप फरवरी मार्च में जैसे हाइब्रिड बाजरा बन एग्रो प्रो का आता है, मक्खन घास अनवांटा कंपनी की, हरे चारे की अगर आप पूर्ति करेंगे, मल्टी कट चारा होता है ये, तो पानी की अगर सुविधा है पशुपालकों को तो इस समय से चारे बोकर तो आप उसकी पूर्ति करके दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और ये जून जुलाई तक चारा आपका चलेगा।
2: बिल्कुल, हमके देखा हरा चारा से जो दुग्ध के उत्पादन बटे वो कीन जाता है, लेकिन कह तरह के हरा चारा उपयोगी का देख गर्मी के भी ज़्यादा बा और हरे चारे में सिंचाई की भी बहुत आवश्यकता
3: जी
2: पड़त है जो ना है। तो देखा जाता है कि गर्मी में जो ना है अगर पानी थोड़ा सा विलम्ब होता तो पत्ती ऐंठ जातीन, तो
3: जी
2: कैसन जो चारा बाटे वो पशु को दिया जाए, ओकर कब कटाई की जाए जो ना है पशु के लिए।
3: एक चारा है मक्खन घास, ये मक्खन घास ये मल्टी कट चारा है, 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। इसमें 70% तक प्रोटीन की मात्रा भी रहती है, मगर इसमें भी सिंचाई की आवश्यकता रहती है। और सुगर ग्रेज करके एक चरी है, एक चरी एमपी चरी है, उसमें भी आप 4-5 कटिंग ले सकते हैं। अगर आप हरे चारे की पूर्ति करते रहेंगे तो दुग्ध उत्पादन, जितना आप आहार देते हैं उतना आप

0: 20% हरा चारा भी उपलब्ध कराते रहें गर्मी में, तो पशुओं को दुग्ध उत्पादन घटेगा नहीं, स्थिर बना रहेगा।
1: बिल्कुल। हमको एक किसान भाई की जानकारी दिखे, आदमी महा कि भैया जब लू लगा तो कुछ न कुछ उनका लक्षण समझ में आ जाता है, कुछ भी तो उपचार जल्दी कर लेते। जानवर में कैसे पहचान करें कि उनका गर्मी लग गई है, उनके लू का प्रकोप बा, या हीट जो गर्मी का जो प्रभाव होता है ओके से प्रभाव उनके ऊपर पड़ चुका बाटे, जैसे अस्वस्थ हैं ओके बारे में बताएं।
0: ऐसा है, सबसे पहले पशु पागुर बंद कर देगा, जो रौंद करना पागुर, और नथनों में जो पानी आता है वो बंद हो जाएगा और खाना पीना छोड़ देगा, और श्वसन तंत्र हांफने लगेगा, जीभ जीभ से हांफने लगेगा, तो आप पहचान कर लेंगे ये गर्मी लू का लू की प्रभाव पड़ गया है। उसके लिए आप क्या करें, सुबह शाम हो सके तो गुड़ का शरबत जरूर दें, तो लू से प्रकोप से बच सकते हैं। छायादार स्थान में बांधें सुबह और शाम, अच्छे स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर बांधें, और दोपहर को हमेशा छायादार स्थान में पशु को बांधें, और दिन में 3 से 4 बार स्वच्छ पानी दें। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो कार्य करेगा पशुपालक भाई, वो भी अपना ध्यान रखते हुए ये कार्य करें।
1: बिल्कुल। हमको एक बात तो देखा जाता है, हमारे जो किसान भाई हैं खास करके जिनके यहाँ भी दुग्ध उत्पादन बाटे पशुपालन करे हैं, तो अपने गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि दिन में कई बार उनका अपने पशुओं का नहवाई देता है जो नहाए पानी से, तो हम कही कब सही समय बाटे और कितना बार उनका नहवावे कि
0: देख,
1: जैसे नुकसान भी ना पहुँचे और गर्मी से भी बचा
0: बहुत
1: रहे।
0: अच्छा सवाल पूछा आपने। पशु को सुबह या शाम के टाइम नहलाना चाहिए। अगर आप दोपहर को नहलाते हैं तो जो आप नहलाएंगे नीचे जो पानी गिरेगा डबल कैजा तापक्रम हो जाएगा, उसका हीट पूरा बाड़े में फैल जाएगा। सबसे बढ़िया टाइम है सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। दोपहर को कभी अपने जानवर को मत नहलाएं। हाँ, हो सके तो खिड़की, जो खिड़की जहाँ बांधते हैं हम जानवर, वहाँ जूट के बोरे भिंगा कर टांग दें, जिससे ठंडी ठंडी हवा बाड़े में आती रहे।
1: ये गर्मी के मौसम में पशुओं के कह कह तरह के बीमारी लगा था, उसका क्या उपचार बेटा साहब?
0: गर्मी के मौसम में बस ये तापक्रम, हम लोगों को तापक्रम उनका मेंटेन रखना है, और तो ये टीकाकरण की बात, ये 3 टीकाकरण गर्मी के मौसम में समय से करा लें तो ये बीमारियाँ नहीं आएंगी। एक चीज़ और, गर्मियों के मौसम में जूं और किलनी की प्रकोप ज़्यादा रहता है, मच्छर का, तो उसके लिए शाम को नीम का धुआं, जानवर जहाँ बांधा है उससे थोड़ी दूर पर नीम का धुआं दे दें, तो इस कीटनाशकों से निजात पा जाएंगी।
1: बिल्कुल। हम कहीं देखा जाता है बहुत से किसान भाई यहाँ धुआं तो जे जानकार हैं देते हैं, कुछ दवाई लगाए देते हैं पशुओं के शरीर में जो ना है, तो कितना हानिकारक बाटे और ऐसे लगाए से का नुकसान पहुंच सका था शरीर उसे त्वचा पे जो पशु बाटे भी।
0: देखो, ब्यूटेक्स दवा आती है 5 लीटर में 1 ml, अगर ज़्यादा मात्रा कर देंगे तो चमड़ी उधड़ भी सकती है, और जब भी ये लगाएं तो जानवर का मुंह कस के बांध दें खूंटे पर कि जो चाटने नहीं पाए, और 2 घंटे के बाद उसे नहला दें। वैसे इंजेक्शन आ गया है कि हाईटेक इंजेक्शन है, वो दोनों परजीवी, अंतः और बाह परजीवी दोनों की मार मारता है, वो पेट के कीड़े भी मार देगा और बाहर जो किडनी जुआएं होंगे वो भी मार देगा। मगर अक्सर देखा गया है आजकल कुछ नकली दवाओं का भी प्रयोग हो रहा है तो असर नहीं होता है। उसके लिए क्या करें, जब आप इंजेक्शन लगाएं या बीटॉक्स लगाएं तो कुछ किडनी बेहोश हो जाती हैं, तो उसके लिए कंघी जो आती है, कंघी से अपने जानवर को काढ़ कर एक जगह इकट्ठे करके उसमें किडनी और जुआ में आग लगा दें।
1: बिल्कुल। हम कहीं जौन भी जानकारी डॉक्टर साहब आप बताएं जो है, हम कहीं अपने किसान भाई निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं और जो उनका पशुपालन है वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आपके जानकारी दे के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा हो राधा बहनी,
3: हाँ
2: गर्मियों में पशुओं की देखभाल में डॉक्टर सुबोध यादव से प्रवीण कुमार मिश्रा भैया का बातचीत रहन, और प्रवीण भैया देखे सब चीज़ पे भी आप बात की हन और एक एक चीज़ पे बात भइल बात भइल।
3: कितनी बढ़िया जानकारी मिली
2: हाँ
3: कि कैसे पशुओं के देखभाल की जा सकत है, और गर्मियों में, और दुधारू जो पशु हैं उनका खास

0: देखभाल करे
1: हाँ
0: के जरूरत पड़त है।
1: एकदम सही कहो। कैसे का नाम से किसान भैया बहनी हरे काम से टीकाकरण कराओ, बहुत जरूरी है
0: हाँ
1: कि बरसात होए कि 1 महीना पहले अगर कराई लेते हैं तो उससे जो रोग है मुँह पका खुरपका और जो रोग है वो होए के जो समस्या रहता खत्म हो जाता।
0: बिल्कुल भैया, देखा आज अबे बात बात कहीं और भी हुई,
1: हाँ
0: लेकिन उससे पहले संदेश सुन लीन जाए।
1: सुनवाए दे।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: नानू भैया,
1: हाँ हाँ
0: देखा आज मंगलवार के दिन बाटे,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: अपनी पंचायती में मंगलवार के दिन रामायण पाठ होते,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो अपने पंच भैया हरे के आज राजा राम त्रिपाठी जी से रामायण पाठ सुनवाए दे, तो हूँ सुनो और पंच भैया भी सुने।
1: सुनवाए दे।

जब भरत जी कश्मीर से अयोध्या में आए और अपनी माता कैकेयी से मिलने के बाद जब मैया कौशल्या के पास गए तो मैया से पूछा कि मैया राम जी वनगमन के समय जब जा रहे थे तो क्या स्थिति थी। मैया कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, मुख प्रसन्न मन रागन रोशु, सब कर विधि सब विधि पर तोषु। और ये भी कहा कि भरत

ये राम का भाव है भरत के लिए। जब राम जी को ये पता चला कि मेरा भरत, मेरी मझली माँ ने भरत को राज्य मांग लिया, राम जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा भरत राजा बनेगा। और भरत जी आ गए और अपनी मैया कैकेयी से मिले। मैया ने कहा, बेटा भरत, मैंने तो सारी बात ठीक कर ली, लेकिन बीच में थोड़ा सा कार्य बिगड़ गया। कहा, क्या बिगड़ा? कहा, बेटा सब कुछ ठीक हो गया, बीच में महाराज स्वर्गवासी हो गए। भरत ने कहा, माँ मैं अंतिम दर्शन नहीं कर सका। अच्छा ये बताओ, राम जी कहाँ है? अब जब मैया ने कहा कि बेटा राम तो 14 वर्षों के लिए जंगल भारत ही बिसरे, पितु मरण सुनत राम बन गौन। जब राम के वनगमन की बात भरत ने सुना तो भरत तो मूर्छित हो गए। कहा, अरे माँ ये तूने किया सब? ये सब तूने किया? अरे मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। अबर मागत मन भाई नहीं पीरा, औ गिरी न जीभ मुह परे उन कीरा। अरे माँ ऐसा करने से तेरा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हुआ? तेरी जीवा कट करके गिर क्यों नहीं गई? माँ राम के विरोध में तूने मुझे आज ले आकर के खड़ा कर दिया, मुझे राम विरोध ही कर दिया। ऐसा करने से तेरा ये हृदय टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हुआ? माँ जाओ, अगर तूने ऐसा किया तो जो मुंह हंसी मुंह मसी सोई लाई, और आंख ओठ उठी बैठे हु जाई। हट जाओ माँ मेरी आंख के सामने से। आज ये तेरा भरत इस अयोध्या के राज प्रसाद में ये शपथ लेता है कि आज से तुझे मैं माँ नहीं कहूंगा, कि कई

कैकेयी से बात करना बंद कर दिया और कहा मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है। सीधे गए मैया कौशल्या के पास। मैया कौशल्या ने जब भरत को देखा तो दौड़ करके भरत को गोदी में ले लिया, मानो राम वापस आ गए। भरत कहते हैं, माँ, भरत राम का विरोधी समझ करके अपने को कौशल्या माँ के सामने बहुत सफाई देते हैं, सौगंध देते हैं। अब सफाई क्यों देते हैं? अयोध्या जैसे राज दरबार में भी, अयोध्या जैसी भूमि पर भी, वहां भी ऐसे लोग थे कि जब भरत जी आए और अपने गुप्तचरों को गांव में भेजा समाचार लेने के लिए, तो गुप्तचर आए तो भरत

से कहे कि भैया भरत, आपके भी तरफ लोग हैं, यानी अयोध्या में रहने वाले कैसे लोग रहते हैं अयोध्या में, पुर नर नारी सुभग सुचि संता और ज्ञानी धर्मशील गुणवंता। जहाँ ऐसे हूँ पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ज्ञानी है, धर्मशील है, गुणवान है, वहाँ भी दो फाट। कुछ तो लोग तो राम की बात कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज ने राम को राज्य दे रहे थे, बड़ा अच्छा था, लेकिन कुछ लोग कैकेयी की बात करते हैं, एक भरत कर सम्मत कहें। अयोध्या जैसे पवित्र भूमि में, अयोध्या जैसे पवित्र जगह में भी कैकेयी के पक्ष वाले हैं। अरे आज की बात तो छोड़ दीजिए, आज अगर राम के विरोध में बहुमत है तो उस समय त्रेता युग में भी भरत के पक्ष, कैकेयी के पक्ष वाले भी अयोध्या में थे। इसलिए भरत ने कहा, माँ मेरी राम के वनगमन में कोई सम्मति नहीं है, अगर है तो जो पाप गाय के मारने से लगता है, जो पाप ब्रह्म हत्या से लगता है, जो पाप गाँव को जलाने से लगता है, जो पाप गौशाला को जलाने से लगता है, वो मुझे लग जाए, मेरी इसमें कोई सम्मति नहीं। भरत ने कितनी सफाई दी। आज जब महाराज की अंतिम क्रिया हुई, तीन तीन बार कार्यक्रम हुए, तो एक शोक सभा हुई। उस शोक सभा में वशिष्ठ जी ने सबके बारे में वर्णन किया, कहा भरत तुम्हारा पिता सोचनीय नहीं है, इसलिए तुम चिंतित मत हो। हाँ एक बात है कि तुम्हारे पिता ने जीते जी तुझे अयोध्या का राज्य दे दिया है, इसलिए भरत तुम राजा बने जाओ। और जब वशिष्ठ जी ने ये बात कही, कौशल्या, सारे पुरवासी, सारे दरबारी, सारे मंत्री, सबने कहा कि हाँ हाँ ठीक है भरत, राजा बन जाओ। भरत उठ करके खड़े हुए, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ कर कहा, गुरुदेव मैं अधर्मी हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए बोलने में तो क्षमा करना। सारे पुरवासी, सारे मंत्री, आप कहते हो मुझे राजा बनने के लिए? अरे गुरुदेव, जब अधर्मी कोई व्यक्ति राजा बनेगा तो इति भीति सब प्रजा दुखारी। ये भरत अधर्मी जिसके कारण से मेरा भैया जंगल की दर्दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप कहते हैं गुरुदेव भरत तुम सोचो मत। अरे गुरुदेव मोहि

0: क्या बात
1: गुरुदेव,
0: आप मुझे कहते हो कि मैं राजा बन जाऊं, मेरा भैया जंगल की दर दर की ठोकरे खा रहा है, अब मेरी भाभी चीर फेन जैसे गद्दे पर सोने वाली वो भी दर दर जंगल की ठोकरे खा रही है, मैं राजा बन जाऊं? ए अधर्मी भरत। अरे मोहिराज जब दे हूं जब ही, और रसा रसा तल जई हई तब ही। गुरुदेव ए अधर्मी भरत इस पवित्र सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठेगा तो ये पृथ्वी सातवें लोक चले जाए, क्या किया जाए? गुरुदेव ने कहा। अच्छा भरत बताओ आखिर किया क्या जाए? कहा गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिएगा, महारानी कैकेयी ने तीन वरदान मांगा था, एक वरदान मांग लिया कि मेरे लिए राज्य ठीक है, दूसरा वरदान मांग लिया कि राम को 14 वर्षों, तीसरा वरदान मांग लिया, ये तीसरा वरदान था कि होत प्रात मुनि वेश भर, अगर ये नहीं जाते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ठीक है, चौथा वरदान तो नहीं मांगा। गुरुदेव मैं पूरी अयोध्या की राज्यसभा से और गुरुदेव से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कैकेयी ने ऐसा कोई प्रतिबंध था कि महाराज दशरथ अपने पुत्र राम से चित्रकूट नहीं मिल सकते? गुरुदेव अगर मेरे पिताजी को चित्रकूट ले जाया गया होता, राम जी से मिल गए होते, तो आज मेरा पिता स्वर्गवासी न हुआ होता। तो गुरुदेव

उपचार। गुरुदेव, मुझे राजा बनने की बात कहते हो? गुरुदेव, एकदम नहीं, मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है भरत? कहा ये कैया कई है मन माही, अप्रात काल चली हूं प्रभु पाई। भरत ने कहा कि गुरुदेव, मेरी एक ही बात है, मेरे एक ही अंदाजा है कि जो मुझे ये कष्ट है, राम के वियोग रूपी अग्नि में मैं जल रहा हूं, इसकी एक ही दवा है कि पूरे समाज के साथ प्रातकाल हम चित्रकूट चलेंगे और 14 वर्षों तक हम चित्रकूट में रहेंगे। अपने भैया को वहीं राज तिलक दे देंगे। उनकी जो अयोध्या है, संपत्ति सब रघुपति के आई, मैं उन्हीं को सौंप दूंगा। गुरुदेव, आज वही भरत जब पिता के मरने की समाचार मिला तो अयोध्या में आए, तो अयोध्या के वासी कोई बात नहीं करना चाहता। कापुर जन्म लही न कहीं कछु, गवही जोहारी जोहारी, भरत कुशल पूछ न सकई, अभय विषाद मन माही। भरत से कोई बात नहीं पूछता, जय जोहार करके चला जाता है। आज वही भरत जब ये कहता है कि नहीं, प्रात काल चली हूं प्रभु पाई, एक या के यही मन माही, त चलत प्रात लखी निरनौनी के, अब भरत प्राण प्रिय भेद सब ही के। आज देखिए, सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, बेटा पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। दुनिया में भरत से राम सी दूरी हो गई तो वही पुरवासी भरत से बात नहीं करना चाहते। आज भरत जब चित्रकूट चलने के लिए तैयार हुए, चलत प्रात लख निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष, वही भरत प्राणों से प्यारा हो गया। अब भरत चलते हैं पूरे समाज के साथ, पहुंच गए कहां, भरद्वाज आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज से वार्ता हुई, भरद्वाज ने कहा, नहीं भरत, इसमें किसी का दोष नहीं है, तात कह के ही दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने देखा था, का मातु कुमति बढ़ा।

अरे गुरुदेव, मेरी माँ ने ऐसा कुयंत्र का प्रयोग किया कि अयोध्या के 12 मार्गों में नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गुरुदेव, अयोध्या बसेगी नहीं, ऐसे मिटई कुजोग। जो कुजोग किया है, कियोग किया है, कुमंत्र किया है, मिटई कुजोग। राम फिरिया ये अवध बसई नहीं आन उपाये। गुरुदेव, जब तक राम जी वापस नहीं आ सकते तब तक अयोध्या पुनः बस नहीं सकती। भरद्वाज से वार्ता हुई। भरद्वाज ने कहा, भरत, हमने पूरी रात्रि भर देखा, अगर राम जी चर्चा करते तुम्हारे चरित्र की तो किशोरी जी बैठ करके सुनती, किशोरी जी तुम्हारे बारे में चर्चा करती तो राम जी बैठ करके सुनते। और एक आश्चर्य की बात बताऊं भरत? कहा, बताओ गुरुदेव। कहा, मैंने देखा था, सारे प्रयागराज के वासी सब लोग देख रहे थे, बनवासी राम ने वियोग तो सभी का सहा। एक भरत

के समक्ष जब पढ़ा गया, संकल्प पढ़ा जाता है वो आर्यावर्ते भारत खंडे भारतवर्ष से पढ़ा जाता है, तो संकल्प में जब ही भारत वर्ष की बात आई उनके समक्ष

सेन रहा गया। ये रामचरितमानस के अंतर्गत राम और भरत का प्रेम है, एक भाई भाई का प्रेम है, समाज को संदेश है। तो गोस्वामी जी ने भरत और राम रामचरित के माध्यम से भरत

0: और राम के चरित्र को समाज में भाई के प्रति भाई का कैसा प्रेम हो, इसको दर्शाने के लिए भरत चरित्र को लिखा। जाऊ न हो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरन धरत को, जय श्री सीताराम।
1: हाँ देखो राधा बहनी,
2: हाँ भैया,
1: राजा राम त्रिपाठी भैया का हमसे रामायण पाठ कर है ना, और भरत के संवाद रहन हो काम से, भाई भाई के प्रेम रहन, सामाजिक समरसता रहन, हम ही कहते रहे।
2: हाँ हाँ।
1: देखे ये वक्त गर्मी खूब चलता है और किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि भैया अपने बारी बगीचा में भी अगर कोनो मटकी उटकी हो भैया तो मन पानी भर के रख देते हैं, तो चिड़ई चिरुमन भी भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ गए भैया, चिड़िया के कैसे रक्षा होए, उनके जीवन के रक्षा होए।
1: हाँ,
2: ऊपरे
1: हाँ।
2: आप कहा चाहते हैं कि सभी किसान भैया जौन भी होए,
1: हाँ।
2: घर हमारे सुनने वाले जितने भी भैया बहनी होए,
1: हाँ।
2: थोड़ के पानी कहूँ दुआरे पे, अटारी पे, खेते में रख दें, जैसे कि अपन पशुअन के साथ साथ पक्षियन के भी पानी मिल जाए।
1: हाँ अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्रम से कि जो उन पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, जो उन जंगली पशु हैं भैया, वो समय इन्हें पानी का थोड़ा दिक्कत होता, तो यह है कि बारी बगीचा में अगर जो उन पुरान नाद उद है या टंकी उंकी रहे तो मन पानी ओनी भर के रख दें।
2: देखा भैया, अब चला चली के बेला होत है,
1: हाँ हाँ
2: तो उससे पहले हम अपने सुनने वाले पंच भैया हरे से कहे चाहब कि जौनी पंचायत घर कार्यक्रम है,
1: हाँ
2: ये
1: हाँ
2: आप सभी के कार्यक्रम है, आप सभी के जितने भी सुझाव प्रतिक्रिया है ओके हम स्वागत करे थे, और आप लोग अगर कोनो विशेष बातचीत चाहत हैं, कोनो तरह के समस्या हो के समाधान विशेषज्ञ भैया से चाहत हो,
1: हाँ,
2: तो
1: हाँ,
2: हमारे सभी के व्हाट्सएप नंबर आ है,
1: हाँ,
2: और फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट करके अपन बात कह सकते हैं,
1: हाँ हाँ
2: ओका हम सभी कार्यक्रम में शामिल करब। तो
1: हाँ
2: व्हाट्सएप नंबर है हमारे पंच भैया ने नोट कर ले,
1: हाँ
2: 800-4925-250 नंबर, एक बार हम और बता दे,
1: हाँ हाँ
2: 800-4925-250 पे आप व्हाट्सएप कह सकते हैं।
1: हाँ
2: आप सबके सुझाव प्रतिक्रिया के इंतजार रह,
1: हाँ
2: और अपन कार्यक्रम में हम सब शामिल करब।
1: हाँ हाँ देखे चले चली के बिला होता है, पंचो राम से विदा लिया जाए,
2: पंचो
1: पंचो
2: राम
1: राम
2: राम।
1: राम।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रूपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रूपये से लेकर 92.21 रूपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश

0: में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
2: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
4: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए।

0: सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ सम्पन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बरात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर विंध्यवासिनी त्रिपाठी की वार्ता यत्नम बिना रत्नम न लभ्यते।
2: यत्नम बिना रत्नम न लभ्यते। यत्न अर्थात प्रयास। प्रत्येक कार्यम प्रयासेन एव सफलम भवति। अतः प्रयासम विना रत्नस्य प्राप्ति अपि असंभवा। चेत कार्ये असफलता अवाप्नोत तर्हि एहि सिद्धयति पूर्ण मनोयोगेन कार्यम न अकरोत। संसारे समानवः महान्तं पदम अलं कुर्वति यत् निरन्तरं यत्नशीलः भवति। यत्नशीलः मनुष्य एव उलंघसिन्धोः पर्वत शिखरेषु ध्वजाम् उत्तोलयति। अस्तु प्रयत्नं वा परिश्रमं सफलतायाः जननी अस्ति। निरंतरं यत्नशीलः एव जयति। यथा एका कथा माध्यमेन यत्नस्य महत्त्वं वर्णितम्। कस्यचित् कृषकस्य 2 पुत्रौ आस्ताम्। तयोः ज्येष्ठः परमो अलसः प्रमादी च आसीत्। कनिष्ठस्तु विद्याव्रती परिश्रमी च आसीत्। सुतद्वयं विद्यालये प्रवेशिकायां प्राविशत्। ज्येष्ठतनयः प्रायः क्रीडा निमग्नो दृष्टः। तस्यैव विद्याम् स्थितिम् आलोक्य पित्रोक्तम् वस् एस्ते परीक्षा कालः अतो नैवम् आचरणीयम्। पश्य श्वानुजम् यः सततम् अध्ययनरतो अस्ति। अवसरं प्राप्य कृषि कर्मण्यपि योगदानं करोति। त्वं तु गृहकार्यम् अपि विहाय केवलं क्रीडामग्नम् इव दृश्यते। अतः पुत्रः कुरुआत्मशक्त्या प्रयत्नम्। तात एव ममानुजो मंदबुद्धिर अस्ति। तस्य स्मरण शक्तिर अपि न छीणास्ति। तेनैव स वारं वारं प्रश्नोत्तराणि रटति। क्षण दूर्यं व तानि विस्मरति। मया तु सर्वाणि कंठस्थी कृतानि। अथ कतिपयादि अनन्तरे ज्येष्ठेन सुतेन परीक्षा भवने प्रश्नपत्रम् आलोक्य साहसम् अपि परित्यक्तम्। तस्य अनुजस्थु

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं हम दिल दे चुके सनम से, विनोद राठौर, कविता कृष्णमूर्ति, करसन सरघातिया और साथियों की आवाज में महबूब का लिखा गीत। संगीत है इस्माइल दरबार का।

संगीत का वो असर होता है जो हमारे मन, मस्तिष्क, तन और हर तरह के हमारे जीवन के अंगों पर असर करता है। और ये संगीत का ही जादू है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें खुश रहने पर मजबूर कर देता है। ये गीत कुछ ऐसा ही था जिसने हमें थिरकने पर मजबूर कर दिया, हमारे मन की धड़कनों को तेज़ कर दिया और दिमाग की नसों को फड़फड़ाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही एक और गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, नमस्ते इंग्लैंड से मनन शाह, साहित्य कालिया और अंतरा मित्र की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, मनन शाह का संगीत।

गदर 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत था। और अब आइए सुनते हैं नाच फिल्म से श्वेता पंडित को।

जी हाँ, श्वेता पंडित की आवाज में अभी आप सुन रहे थे तबिश रोमानी के बोल, शैलेंद्र स्वप्निल की धुन पर। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म रॉकस्टार से।

रॉक स्टार के मोहित चौहान की गायस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम। सबरस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम के स्वर में इस भक्ति रचना से।

सबरस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं गजल। गुलुकार हैं गुलाम अली और अलाम है शहजाद अहमद का।

0: अपनी तस्वीर। इस गजल के साथ ही सब्र कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हम

0: हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।

0: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे।

0: आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर

0: In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur. When reports last came in earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनरल मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार

0: साझा की। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखुसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और

0: आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा तआवुन की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखुसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जना मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वजीर आजम के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
2: वजीर आजम पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि यह दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली क्लीदी शराकत दारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तजारत, सरमायाकारी और सनती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकत दारियों का ऐलान किया जाएगा क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर दाखला और इमदादी बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा पांच बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहे अमल तैयार किया है।
3: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
1: इससे कबल मरकजी वजीर दाखला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर अहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक महफूज, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीक़ेकार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह तीन रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और तरक्की के तसव्वुर के साथ काम कर रही है। ये खबरें

आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मरतबा इंतहाई खतरनाक या लाइलाज बीमारियों में मुबतला कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। अदालत ने इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज और अवाम की हिफाजत की जरूरत का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अर्जदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा ना हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका यह फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और यह पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी योशाकोफ के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मरतबा 23वें भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की सरकारी वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC के हेडक्वार्टर्स में होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर का इम्तिहान दे रहे तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलाकवामी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानव सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे जबकि प्रिंस यादव को पहली मरतबा ODI टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच 6 जून से मुलानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून से धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में ODI मैच खेले जाएंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 221 रन का निशाना रखा है। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा

0: मेहंदी हसन की आवाज़ में अभी आप ये गज़ल सुन रहे थे। पेश खिदमत है फरीदा खानम की आवाज़ में ये गज़ल। सुबह की अजान से पहले ये रात ख़त्म न होगी, आज जाने की ज़िद न करो, मोहब्बत से क्या दुश्मनी होगी। सूरज को कह दो ज़रा और इंतज़ार करे, तेरे जाने से पहले मेरी दुनिया ना उजड़ जाए। चांद को नींद आ गई, तारों को ख्वाब, आज जाने की ज़िद न करो, दे दो मुझे ये शबाब। मेरी तन्हाई की चादर में सिमट जाओ ज़रा, तुम हो तो मौसम हसीन, तुम ना हो तो अजाब। जुदाई का सोच के ही लहू खुश्क होता है, आज जाने की ज़िद न करो, दिल भी क्या रोता है। एक रात की बात है, उम्र भर का सौदा है, रुक जाओ तो जन्नत, चले जाओ तो मुर्दा है।
1: आज जाने

कहकशा की महफिल में अब समात फरमाइए गुलाम अली की आवाज़ में हसरत मोहानी की गज़ल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, तेरी खामोशी को भी हमने खुदा माना।

लिया याद है। अब तो आईने भी पूछते हैं रो रो कर, अब तो आईने भी पूछते हैं रो रो कर, तेरा चेहरा देखना मुस्कुराना याद है। वो तेरे वादे वो कस्में वो निभाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दिल के कोने में अब भी रखी है तेरी निशानी, दिल के कोने में अब भी रखी है तेरी निशानी, तेरा हाथ छोड़ के पलट जाना याद है।

कहकशा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। इसमें रिश्ते की गहराई का है आलम। दर्शन फाकिर ने लिखी है ये गजल और कुछ कहती है इस तरह, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटा करते, दिल से दिल का फसाना लफ्जों में छूटता करते हैं, दूरियों से कहाँ ख़त्म होते हैं ताल्लुक, सांस लेने के पहले भी हम तेरा नाम लेते, शहर बदल जाए मौसम बदल जाए, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटा करते, तू दिखे ना दिखे तेरी परछाई रहती है, आँख बंद करूं तो भी तू सामने बहती है, जिस्म से जिस्म का रिश्ता तो वक्त तोड़ देता है, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटा करते, रूह से रूह का वादा कयामत तक रहता है, कब्र पे भी तेरा नाम लिखा मिलता है।

0: इस गज़ल के साथ ही कहकशा कार्यक्रम की महफिल अब यहीं तक। इजाज़त दीजिए शिप्रा श्रीवास्तव को। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़ करके खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद सर।
2: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
3: जी,
2: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं
3: जी,
2: जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
3: प्रतियोगिताओं में। ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेंड तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ वर्ण प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिया में, जैसे मूसाखाड़ बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है, लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं, उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जैवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरुजी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
2: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक

0: कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा। तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ, मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कोई कर ले, लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है। एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए,
1: जी
0: कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है,
1: जी जी
0: नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है।
1: जी
0: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है,
1: जी
0: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में।
1: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहां तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौरुष अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहां पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहां हमको बुलाए थे लोग। और उस नेक्सलाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं। कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा। जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं, उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं, वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं। और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं, एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है। इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था, राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरेगांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमारो भी चिरेगांव का ही है। ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया। और अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ, चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में गांव है डबरिया, उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। और हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर, पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूं। और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, ये बगल पचराव गांव की रहने वाली है और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र यही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की है, सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये छठवां स्थान प्राप्त की, जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी

0: जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी। बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारे जगह मेडल और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का, उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी,
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है, लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
0: जी बिल्कुल,
1: तो
0: बढ़ाने की आवश्यकता
1: वो
0: है।
1: जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का खास करके खेलों में वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे गांव जाते थे दौड़ने, मलेरिया हमारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती, अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है, और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर के अपेक्षा कि गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे इसको लीजिए, पोल वाल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी कितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर। और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, निकल करके आए और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेश सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA MPED डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना है, अभी तो मैं खिलाड़ी ही बन रहा हूँ। बोले वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि मैं सिर्फ पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक

0: जवान सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से ईमानदारी से तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
1: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
0: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
1: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
0: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं। वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कितना एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
0: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घोड़ सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से थपकी देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टेक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चों से पहले समझ जाए, ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनिंग में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉल्ट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
1: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, चूंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों, जय हिंद।
2: जय मैम।
1: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से है वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय गाजीपुर से।
5: मैं आरती सोनमठ से।
6: मैं सिंचन सेवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव जो की जौनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह बाबतपुर से।
10: मैं रीचा यादव बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल आयर से।
12: प्रशिष्टि मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव जौनपुर से।
14: पलक यादव चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर फिरोजाबाद।
1: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का,
17: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहते तो पढ़ लेते, फिर उसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते हैं वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
18: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
19: 10 बजे तक।
1: तो बच्चों, मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
19: मेरा नाम खुशी पटेल है। मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया मुझे गेम खेलने के लिए। फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर, हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए।

0: प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बीएचयू का, फिर यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्टल में हो गया 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी आप क्या खेलती हैं?
0: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा, प्रशिष्टि आप क्या खेलती हैं?
2: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
2: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ और सर के अंडर हमें बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं, हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल है।
1: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए। इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
3: कुछ मुश्किल से नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने वो पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है और ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और

0: और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, हमने वो पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजीव जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
0: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम, अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए सारी ने व्यवस्था की है इनकी चोटें के लिए और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
0: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
1: खेल के दौरान।
0: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनियोजित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है। जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना है अगर सामान्य चोट है तो, उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा श्रोताओं, बातचीत के सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
2: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
2: मैडम, ये बता देंगे, एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल के बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
2: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
2: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है, ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
2: जी हाँ बच्चे, मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है, नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
0: मैम, पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेन्यू तैयार है, वही इनको दिया जाता है, उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेन्यू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे, अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके, हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जंप

0: या लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
0: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, पीएएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं, एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जम्पर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है।
0: मैम बहुत अच्छा है आगे, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
1: एक अकेला ही काफी
0: है, और शुरुआत हो गई है। अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे। अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है, और हर एक गाँव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है। मैम अभी ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
1: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से। साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
0: हाँ मैम बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती हैं तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और या हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, और देश का प्रतिनिधित्व हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किया गया और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं सरोद वादन। कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। तो आइए सुनते हैं उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग रागेश्वरी।
1: वैसे तो हर राग से मुझे बेहद प्यार है और मेरी ये कोशिश रहती है कि अलग अलग किस्म के राग पुराने और आजकल के यानी जो कुछ मैंने भी बनाए हैं वो भी मैं बजाता हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल राग जो सदियों से बने हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी एक खुशबू है। जैसे आपने कामोद सुना, बहुत ही रेयर राग है कामोद आजकल। अब मैं राग रागेश्वरी दोनों तरह से कहा जाता है और वो मैं पेश कर रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत राग है, इसके स्वर और इसका एक अपना माहौल है। इसमें आलाप, उसके बाद 3 रचनाएं मैं बजाऊंगा। पहली झपताल में है 10 मात्रे में और दूसरी मध्य लय में 16 मात्रा और फिर द्रुत वो भी 16 मात्रे में। राग रागेश्वरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खान। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शफत अहमद खान और तानपुरा पर थी मेधा गुजराल। राग रागेश्वरी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता है। आइए सांप्रदायिक एकता का प्रण लें।

रक्तदान महादान। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता। आपकी एक रक्तदान से बहुत से लोगों की जान बच सकती है, इसलिए जब भी आवश्यकता हो रक्तदान के लिए अवश्य आगे आएं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे शुरू की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।